0: இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
2: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम सिकल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुँच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। दिल्ली नगर निगम MCD ने खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। यह अभियान निगम के सभी 12 जोन में चलाया जा रहा है। MCD ने कल 34 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसके अलावा 17 संपत्तियां सील की गई, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 4 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पिछले 10 दिनों में देश भर में विभिन्न स्थानों पर 6 बड़े अभियान चलाए हैं। निदेशालय ने 2 तेंदुए की खाल, 180 जीवित भारतीय तारा कछुए, 12 जीवित टोकेगे को, लगभग 24 किलोग्राम पेंगोलिन के शल्क और लगभग 500 ग्राम बाघ की हड्डियां बरामद की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन मामलों में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। अमेरिका ओपन में अमेरिका की बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन एरिना सबालेंका का मुकाबला तीसरी सीड जेसिफा पेगुला से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nina Rakel. Union Cabinet has approved 8 multi-tracking railway projects at total cost of over 20,800 crore rupees. Briefing media after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said of these projects, 3 multi-tracking railway projects have been approved at a total cost of 10,783 crore rupees. Mr. Vaishnav said these projects cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, increasing the existing network of Indian Railways by about 656 kilometers. Mr. Vaishnav said that these projects are Kharagpur to Jharsuguda, 4th line, Katni to Pendra Road, 4th line, and Bilaspur to Pendra Road, 3rd line. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav further informed that the other 5 multi-tracking projects have been approved at a cost of nearly 10,021 crore rupees. The projects cover 17 districts across the states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana, increasing the existing network of Indian Railways by about 540 kilometers. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav said these routes include Arakonam to Reniguntla, 3rd and 4th line, Whitefield to Bengarapet, 3rd and 4th line, and doubling of Hosur to Umalur line. The approved multi-tracking projects will enhance connectivity to approximately 2,100 villages having a population of about 52 lakhs. Mr. Vaishnav informed that the government has decided to four-lining or quadrupling of all the 7 high-density railway corridors. These routes are Delhi to Howrah, Mumbai to Howrah, Delhi to Mumbai, Delhi to Guwahati, Delhi to Chennai, Howrah to Chennai and Mumbai to Chennai route. These routes cover 11,000 kilometers railway networks and four lining of 2,000 kilometers has been completed. These approved projects for four lining are related to the high density railway networks. Prime Minister Narendra Modi has said that the cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. In a social media post,

0: கேட்ட அந்த பாடலுடன் தேனிசை நிறைவு பெறுகின்றது. இன்னும் சில நொடிகளில் சமஸ்கிருதத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: இயம் ஆகாஷவாணி. சம்ப்ரதி வார்த்தாஹ ஸ்ரூயந்தாம் பிரவாச்சிகா ரிச்சா ஜா. अथ वार्ताः. प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन नवराज्येषु 28,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, अनुमोदिताः। एतासु परियोजनासु प्रायः 97.1 किलोमीटर मिताः रेलमार्गाः सम्मिलिताः भविष्यति। एताभिः रेलसम्पर्कव्यवस्थायां परिष्कारः, विद्यमानमार्गेषु यातायातसम्मर्दस्य न्यूनीकरणं तथा यात्रिणां मालवाहनस्य च द्रुततरगमनं सुकरं भविष्यति। एतासां परियोजनानां 29.2 30.2 पूर्णत्वस्य लक्ष्यं निर्धारितमस्ति। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संबोधयन् केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन गृहीतानां निर्णयानां विवरणं प्रदत्तवान्। सः उक्तवान् यत् मंत्रिमंडलेन तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना राज्येषु 17 जनपदेषु विस्तृताः 5 रेल बहुमार्गीकरण परियोजनाः अनुमोदिताः। एताभिः परियोजनाभिः विद्यमान भारतीय रेलजाले प्रायः 44.5 किलोमीटर मितः रेलमार्गः वर्धिष्यते। एतासां 5 परियोजनानाम् अनुमानितव्ययः आहत्य 21.10 अस्ति। श्री वैष्णवः उक्तवान् यत् प्रशासनेन 17.10 अधिकमूल्याः 3 अन्याः रेल बहुमार्गीकरण परियोजनाः अपि अनुमोदिताः। एताः परियोजनाः पश्चिमबंगाल, झारखण्ड, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यानां 14 जनपदेषु विस्तरिष्यन्ते। एकस्य प्रश्नस्य प्रत्युत्तरे श्री वैष्णवः संसूचितवान् यत् मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा आगामी वर्षे प्रारप्स्यते। भारतम् 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगितायां प्रथमवारं 11 नूतन कौशल श्रेणीषु सहभागं करिष्यति। इयं प्रतियोगिता अस्य मासस्य 22-27 दिनांक पर्यन्तं चीन देशस्य शांघाई नगरे आयोजयिष्यते। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालयेन संसूचितं यत् टीम स्किल इंडिया इत्येतत् 64 कौशलेभ्यः 63 कौशलेषु प्रायः 70 प्रतियोगिताभिः युक्तेन दलेन सहभागं करिष्यति। मंत्रालयेन उक्तं यत् अद्यावधि विश्व कौशल प्रतियोगितायां इयं भारतस्य बृहत्तमा, विविधता पूर्णा च सहभागिता भविष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग

0: मंत्री पीयूष गोयलः ब्रिक्स देशेभ्यः महिलाभ्यः अवसर विस्ताराय तथा अन्ताराष्ट्रिय व्यापारे महिला उद्यमिनीनां महिला नेतृत्वाधीनानां च उद्यमानां प्रोत्साहनाय मिलित्वा कार्यं कर्तुम् आह्वानं कृतवान्। श्री गोयलः बलं दत्तवान् यत् महिला नेतृत्वाधीनेभ्यः उद्यमेभ्यः अन्ताराष्ट्रिय व्यापारे अवसराणां लाभं स्वीकर्तुं स्वकीयां सहभागितां च वर्धयितुम् आवश्यकं सहकार्यं मञ्चश्च प्रदातव्यौ। ग्रामीण विकास मंत्रालयस्य अंतर्गतं भूमि संसाधन विभागः अद्य डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 3.0 इत्यस्य कार्यान्वयन संबद्धान् दिग्निर्देशान् प्रकाशयिष्यति। मंत्रालयेन सूचितं यत् आगामी DILRMP 3.0 इत्येतत् 50.65 लाख करोड़ रुपयाणां अनुमानित वित्त व्ययेन केंद्रीय क्षेत्रीय योजना रूपेण कार्यान्वितं भविष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन ओडिसायाः पृथक् पृथक् स्थलेषु अद्य प्रबलाति प्रबल वृष्टेः संभावनां दृष्ट्वा रक्तवर्ण परा संचेतना प्रसारिता अस्ति इति वार्ताः।
1: ஆகாஷ்வாணி நேரம் 7 மணி.

0: सूरज की पहली किरण जब धरती को छूती है, हर सुबह जिंदगी को एक नई सांस देती है। कहती है, बीती रात का अंधेरा अब बीत गया, जो थमा हुआ था कल तक वो सफर फिर जी उठा। जी हाँ, हर सुबह अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आती है। रात कितनी भी लंबी क्यों ना रही हो, सूरज की एक किरण उस अंधेरे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का हौसला दे जाती है। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, थकान भी होती है, लेकिन हर नई सुबह हमें याद दिलाती है कि रुकना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि आगे बढ़ते रहना ही असली जीत है। कई बार सिर्फ ये सोच लेना कि आज का दिन कुछ बेहतर लेकर आएगा, हमारी पूरी दिनचर्या को बदल देता है। तो आइए इस सुबह का स्वागत करें नई ऊर्जा के साथ, नए विश्वास के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन हमें कुछ नया सिखा कर जरूर जाएगा। इसी सकारात्मक सोच के साथ आज सवेरे कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज मैं हूँ वैष्णवी आपके साथ और मेरे साथ है मेरे सहयोगी नीना आरेकल। हेलो नीना।
1: हेलो वैष्णवी। इंडीड इट्स अ ब्राइट न्यू डे एंड सिंपली बी प्रेजेंट इन द मोमेंट फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द पीपल यू लव, दैट्स व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी FM गोल्ड ऑन 100.1 MHz एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग टू यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेर इन वी गिव द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज 10th of September 2026। लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस वैष्णवी।
0: जी बिल्कुल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक के 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
2: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है

0: कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा।
1: Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has called on BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. The minister also stressed the need for easier access to credit markets and predictable rules of business to leverage growth and opportunities for women-led enterprises. He was addressing the BRICS WBA Women-led Development Conference in New Delhi. Mr. Goyal said, India has focused on empowering women financially, socially, and through education, skills, and an improved quality of life with the objective of making women drivers of the country's growth.
0: वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने देशों को वित्तीय अपराधों के लिए गेमिंग और विभिन्न जुआ प्लेटफॉर्म के बढ़ते दुरुपयोग के बारे में चेतावनी दी है। कार्यबल ने कहा है कि अपराधी जुआ प्लेटफॉर्म का उपयोग करके बिना जुआ खेले ही धन का लेन देन कर रहे हैं। कार्यबल ने अवैध और बिना लाइसेंस वाले ऑनलाइन जुआ को भी एक बड़ा जोखिम बताया है। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के नए जोखिम संकेतक सरकारों, नियामकों और व्यवसायों को संदिग्ध लेन देन का पता लगाने और धन शोधन, आतंकवादी वित्त पोषण और गेमिंग तथा जुआ क्षेत्रों से जुड़े अन्य वित्तीय अपराधों से निपटने में मदद करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।
1: सिक्किम मेड फीचर फिल्म नोमाहांगमा, directed by filmmaker Niara Subba and produced by H.M. Subba, has been selected in 2nd Nepal Indigenous Film Festival NIFF 2026, scheduled to be held in London, United Kingdom on 27 September. A report.
2: The 90-minute feature film Numahangma is based on the real-life journey and experiences of producer H.M. Subba, portraying the struggles, challenges and perseverance of a woman as she navigates family responsibilities and works her way towards success. The film premiered at Vajra Cinema Hall in Gangtok and has since embarked on a journey through various film festivals. Previous to this recognition, Numahangma won both Best Director and Best Film, with Niraya Subba receiving the Best Director Award in 2nd Yakthong Cine Awards International 2082, which took place in Nepal on 8th February. Moinak Chatterjee, Akashvani News, Gangtok.
0: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने कल ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में आधार फेस ऑथेंटिकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट और चेहरे के सत्यापन के लिए सैंडबॉक्स जारी किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इन नए टूल की मदद से बैंक, फिनटेक कंपनियां और अन्य संगठन अपने मोबाइल ऐप में आधार आधारित चेहरे के सत्यापन की सुविधा को आसानी से विकसित और जांच सकेंगे। फेस ऑथेंटिकेशन किट सुरक्षित और एकीकृत प्रमाणीकरण सुविधा उपलब्ध कराएगी। वहीं सैंडबॉक्स के जरिए डेवलपर्स किसी सेवा को शुरू करने से पहले ही चेहरे की तस्वीर लेने, व्यक्ति के जीवित होने की जांच, पहचान सत्यापन और अलग अलग परिस्थितियों में सिस्टम की जांच कर सकेंगे।
1: India has intensified its humanitarian assistance to Nepal in the wake of devastating flash floods, delivering over 130 tons of relief material and deploying 54 expert personnel to support search, rescue and forensic operations. The Indian Embassy in Nepal said yesterday that an 8th Indian Air Force aircraft carrying 35 tons of relief and rescue supplies landed in Kathmandu, marking the latest shipment in a continuous aid effort launched on August 26, 2026. In the U.S. Open, Americans Ben Shelton and 11th seed Francis Tiafoe have set up an All-American men's singles semifinal. In the women's singles semifinals on Friday, defending champion Aryna Sabalenka will face 3rd seed Jessica Pegula, while 4th seed Coco Gauff will play Elena Rybakina of Kazakhstan.
0: श्रोताओं, अब जरा अपने सफर का रुख देश के अलग अलग शहरों की ओर करते हैं, जहां आज की सुबह अपने साथ कई अहम गतिविधियां लेकर आई हैं। तो शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां आज की खबरों में क्या कुछ खास है, आइए जानते हैं। दिल्ली नगर निगम ने शहर के सभी 12 जोन में खतरनाक इमारतों, अवैध निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान व निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अभियान में अब तक 34 जगहों पर इमारतों को गिराने

0: की कार्रवाई, 17 संपत्तियों को सील करने और 22 कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई। पीजी इमारतों के सर्वे के दौरान अब तक 1,243 ऐसी इमारतों की पहचान हुई है जहां पीजी की सुविधाएं चल रही हैं और करीब 24,000 लोग रह रहे हैं। नगर निगम ने कहा है कि इन इमारतों पर लगातार नजर रखी जा रही है, जहां भी नियमों का उल्लंघन, इमारत की कमजोरी, अवैध निर्माण या सुरक्षा से जुड़ी समस्या मिलेगी वहां नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
1: Union Minister of State, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Ministry of Social Justice and Empowerment, B.L. Verma, visited the Southern Regional Laboratory of the Bureau of Indian Standards, Chennai, yesterday. The minister interacted with the officials of BIS and appreciated and dedicated efforts of the organization in safeguarding consumer interests through standardization, product certification, hallmarking and the compulsory registration scheme. He highlighted the significant role of BIS in ensuring that consumers receive quality, safe and reliable products conforming to Indian standards. Some more from Chennai. Intellect Design Arena has set its sights on 5,000 crore rupees in revenue over the next 3 years, driven by a range of newly built AI solutions and targeting new customer segments, including global capability centers and fintech companies, according to the company's founder and chairperson, Arun Jain. The fintech company is ramping up its product portfolio with AI offerings, which include a platform for governance and unifying different enterprise data systems. He said that company serves bank and financial institutions and is expanding into new areas and geographies with its AI products.
0: और अब आगे बढ़ते हैं, मुंबई की ओर रुख करते हैं। महाराष्ट्र में इस बार गणेश उत्सव को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक खास पहल होने जा रही है। महाराष्ट्र के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से आज इको फ्रेंडली महागणेश प्रतिमा कार्यशाला का आयोजन नवी मुंबई के सिडको सेंटर में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। इस विशेष कार्यशाला में करीब 7,000 स्कूली छात्र और नागरिक एक साथ पर्यावरण अनुकूल गणेश प्रतिमाएं तैयार करेंगे। महाराष्ट्र में अपनी तरह की पहली और महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
1: वैष्णवी, नाउ वी मूव ऑन टू बेंगलुरु। The Department of Collegiate Education, in collaboration with the National Institute of Mental Health and Neurosciences, NIMHANS, and regional partner institutions, has completed a statewide orientation program on safeguarding student mental health. The initiative, conducted in Bengaluru, Kalaburagi, and Dharwad, covered more than 420 government first grade colleges and over 800 principals and mental health safety coordinators. The programs focused on recognizing mental health concerns, suicide prevention, institutional support systems, tele-support services, and digital mental health resources. The initiative was undertaken in accordance with the Supreme Court guidelines, the mental health policy, and the Government of Karnataka's directions on protecting students' mental health. Some more from Bengaluru. Bangalore Water Supply and Sewage Board BWSSB Chairperson Dr. N. Manjula has directed officials to record details of all repairs carried out following public complaints on the board's geographic information system platform. She said the data would help identify recurring problems and pipelines requiring frequent repairs, enabling permanent data-driven solutions. During an inspection of the North Zone, Dr. Manjula reviewed pipeline works at Kattiganahalli and the sewage treatment plant STP under construction at Kogilu Lake.
0: खाने पीने की दुकानों, होटलों और रेस्तरों की जांच के बाद राज्य औषधि नियंत्रण विभाग ने नकली दवाओं के गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। बुधवार को विभाग ने कोलकाता पुलिस की प्रवर्तन शाखा के साथ मिलकर बड़ा बाजार इलाके के कई दवा दुकानों, वितरकों और थोक विक्रेताओं पर छापेमारी की। अधिकारियों ने हर दवा के बैच नंबर की जांच की और कारोबारियों के जरूरी दस्तावेजों की भी गहन जांच की। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह अभियान मिलावटी या मानक के अनुरूप नहीं होने वाली दवाओं की बिक्री का पता लगाने के लिए चलाया गया। नीना, ये कार्रवाई लोगों की सेहत और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है आजकल के समय में, क्योंकि नकली या मिलावटी दवाएं सीधे उनकी जान और स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती हैं।
1: यस, सेफ्टी फॉर ऑल इज प्रायोरिटी। Now we move on to Hyderabad. The

0: outstanding achievements and innovation across the temperature-controlled logistic ecosystem.
1: चलिए अब जान लेते हैं आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। राजधानी दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। यहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं पूर्वी भारत के महानगर कोलकाता में दोपहर बाद या शाम के समय बारिश होने की संभावना है। बात करें तापमान की तो अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और नीना, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में कैसा मौसम रहने वाला है?
0: Yes, Vaishnavi, Chennai will have a generally cloudy sky with moderate rain. The minimum temperature will be around 27 degrees Celsius, while the maximum is expected to be around 36 degrees Celsius. Bengaluru will have a partly cloudy sky. The minimum temperature will be around 20 degrees Celsius, while the maximum may reach 31 degrees Celsius. Hyderabad will also have likely to have a partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The minimum temperature will be around 25 degrees Celsius, while the maximum may reach 32 degrees Celsius.
1: और अब इतिहास के पन्नों में 10 सितंबर की तारीख देश दुनिया की कई अहम घटनाओं की गवाह रही है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के दिन इतिहास में दर्ज कुछ प्रमुख घटनाओं पर। आज ही के दिन 1846 में अमरीकी आविष्कारक एलियस होवे ने सिलाई मशीन का पेटेंट कराया था। इस एक आविष्कार ने कपड़ा उद्योग की तस्वीर पूरी तरह बदल दी थी और घर घर में कपड़े सिलने का तरीका आसान बना दिया था।
0: इन 1608 John Smith became president of the governing council of Jamestown, Virginia. In 1813, the Battle of Lake Erie was fought during the War of 1812, resulting in a U.S. naval victory. In 1846, Elias Howe was granted a U.S. patent for his sewing machine design. In 1939, Canada declared war on Nazi Germany, formally entering World War II.
1: वहीं 1960 के बात करें तो इथियोपिया के धावक एबेबे बिगिला ने रोम ओलंपिक में मैराथन का स्वर्ण पदक जीता था। वे उप सहारा अफ्रीका से ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने थे।
0: In 2008, the Large Hadron Collider at CERN was powered up for the first time. In 2016, Mariappan Thangavelu won a gold medal and Varun Bhatti won a bronze medal in Rio Para.
1: और 2020 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य मत्स्य उत्पादन बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और मत्स्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। और अब आज के दिन की विशेषता के बारे में श्रोताओं को बताते हैं। श्रोताओं, कई बार हमारे आसपास कोई ऐसा होता है जो हर रोज मुस्कुराता है, हर किसी का हाल पूछता है, पर खुद अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाता। हम सब भागती दौड़ती जिंदगी में इतने उलझे रहते हैं कि कई बार अपने सबसे करीबी लोगों के भीतर चल रहे तूफान को भी भाप नहीं पाते। शायद इसीलिए साल में एक दिन ठहर कर ये सोचना बेहद जरूरी हो जाता है कि किसी की जिंदगी बचाने के लिए कभी कभी बस एक सुनने वाला कान और एक साथ खड़े होने वाला हाथ ही काफी होता है। आज का दिन दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में हर साल करीब 7,20,000 से ज्यादा लोग आत्महत्या की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, यानी हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति ये कदम उठा लेता है। भारत की बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में देश में करीब 1,71,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा 18 से 45 साल की उम्र के लोगों का था, यानी वो वर्ग जो देश के लिए सबसे ज्यादा उत्पादक और सक्रिय माना जाता है।
0: Yes, Vaishnavi, you rightly said that today we need to listen to each other more than, giving advice. So it's important that you listen, you give time and be with that person, because sometimes we don't need the perfect words, we just need to be the person who stays and listens. This World Suicide Prevention Day, with the theme Changing the Narrative on Suicide, start the conversation. Let's remember that a simple conversation can create a safe space for someone who is struggling. If someone says, I'm not doing okay, don't

0: don't rush to give advice. You don't have to have all the answers or become their therapist. You simply need to be present, because starting the conversation can be the first step towards support and hope. This World Suicide Prevention Day, let's change the narrative from silence to conversation, from judgment to understanding, and from isolation to connection.
1: बिल्कुल सही कहा नीना आपने, क्योंकि कई बार लोगों को बस आखिरी समय में भी कोई चाहिए होता है उनको सुनने के लिए, और कई बार हम उनके पास कोई नहीं होता सुनने के लिए। तो श्रोताओं, अगर आपके पास भी कोई आसपास है ऐसा जो कि कोई व्यक्ति जो लंबे समय से उदास है या अकेला महसूस कर रहा है, तो उसे खुलकर बात करें, उसे सुनें, और ज़रूरत पड़ने पर उसे किसी काउंसलर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मिलने के लिए प्रोत्साहित करें। याद करें कि किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ये कोई टैबू नहीं है। लोगों ने इसको बहुत उस तरह से सोच रखा है कि नहीं, हम उनके पास नहीं जाएंगे, पर नेचुरल है ये, क्योंकि जैसे हम अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। देश में सरकार की ओर से किरण नाम से एक हेल्पलाइन भी चलाई जा रही है, जिसका नंबर है 1800-599-0019, जहां 2400 घंटे मुफ्त परामर्श लिया जा सकता है। तो आइए इस विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर हम सब ये संकल्प लें कि किसी की मुस्कुराहट के पीछे छुपे दर्द को नजरअंदाज नहीं करेंगे, और बातचीत की शुरुआत करके किसी की जिंदगी बचाने में अपना योगदान जरूर देंगे।
0: And now we come to the section of births and deaths. Dear listeners, today we turn to one of the most inspiring figures in global business, Jack Ma. Born in Guangzhou, China, Jack Ma rose from humble beginnings to become the co-founder and former executive chairman of Alibaba Group, one of the world's largest technology conglomerates. Once an English teacher, he transformed into a visionary entrepreneur, championing the power of an open market-driven economy. Jack Ma has also been recognized internationally, including being named second on Fortune's World's 50 Greatest Leaders list in 2017. And now let's hear a reminder from Jack Ma about time.
2: The question is not how much time do I have? The question is, what are you doing with your 24 hours? I tell you from my heart, most people are not poor because they don't have money. They are poor because they waste their time. They kill their own future every single day, slowly, comfortably, and without even realizing it. They wake up, scroll on their phone for 1 hour, watch useless videos, complain about life, gossip, then say, I don't have time. My friend, stop fooling yourself. Time is the only thing in life you can never get back.
1: जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन अपने निर्णायक दौर में था, तब जतेंद्रनाथ मुखर्जी, जिन्हें प्यार और सम्मान से बाघा जतिन कहा गया, बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारियों में शामिल थे। वे युगांतर आंदोलन के प्रमुख नेताओं में रहे, और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह की योजना में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बालासोर के चशाखंड में अंग्रेजी पुलिस से उनका भीषण मुकाबला हुआ। गंभीर रूप से घायल बाघा जतिन ने आज ही के दिन 1915 को बालासोर अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। उनके साहस और संघर्ष ने आने वाली पीढ़ियों के क्रांतिकारियों को गहरा प्रभाव दिया था। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं की धरती से निकला एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष किया, और आजादी के बाद प्रशासन की मजबूत नींव रखने में भी बड़ी भूमिका निभाई, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। आज ही के दिन 1887 को अल्मोड़ा में जन्मे पंत पेशे से वकील थे, और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। वे संयुक्त रूप से प्रांत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं में उभरे, और स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
0: And now let's dive into the world of cinema with one of Britain's finest, Colin Firth. Born on 10 September 1960, Colin Firth is an actor and producer whose career has spanned decades, genres and continents. He first rose to fame in the mid-1980s as part of Brit Pack of rising stars, but it was his unforgettable turn as Mr. Darcy in the BBC's Pride and Prejudice that made him a household name. But it was his deeply moving portrayal of King George VI in The King's Speech that earned him the Academy Award for Best Actor, along with a Golden Globe and BAFTA. Here's Colin Firth's iconic speech as King George VI in The King's Speech 2010, where he wrestles with the burden of authority and his

0: So now, listeners, today is also the birthday of Anurag Kashyap, born on 10th September 1972. He's a director, writer, producer and actor whose work has redefined Hindi cinema. His journey began as a co-writer for Ram Gopal Varma's Satya, Panch and Black Friday.
1: और श्रोताओं, आज के आज सवेरे में बस इतना ही। उम्मीद है आज की मुलाकात आपके दिन में कुछ नई जानकारी और सकारात्मक ऊर्जा जरूर जुड़ गई होगी।
0: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु नियमों का पालन न करने को लेकर ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में अमरीका के दोनों खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफू आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
3: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
2: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 52 लाख की आबादी वाले लगभग 2100 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सबसे व्यस्त सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लाइन का बनाने का फैसला किया है। इनमें दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई शामिल है। इनमें से करीब 2000 किलोमीटर रेल मार्ग को पहले ही 4 लाइन का बनाया जा चुका है।
3: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
2: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और सूरत से वापी तक प्रारंभिक 100 किलोमीटर का खंड जल्द ही खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से

0: छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से विरासत और वन्यजीव पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुँच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास पे बड़ी भूमिका निभा सकें। श्री गोयल ने बताया कि भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं।
4: Women, we open their bank accounts.
5: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
4: Our members of 9 million self-help groups.
0: लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों के बीच संवाद और सहयोग से सदस्य देशों, साझेदार देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत ने 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा $4 trillion से बढ़ाकर $30 trillion करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया को श्रीलंका और भारत दोनों में महिलाओं के लिए एक आदर्श और महिला सशक्तिकरण तथा नारी शक्ति का प्रतीक बताया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 35 सदस्य बोर्ड ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के पक्ष में 23 वोट पड़े, 5 विरोध में और 8 सदस्य मतदान से दूर रहे। ये प्रस्ताव अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पेश किया था। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ वोट किया। ये कदम अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से जारी सैन्य टकराव और बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। اسماعیلی مسلم سمودائے کے 50ویں امام پرنس رحیم آغا خان پنچم اپنی پہلی بھارت یاترا پر کل نئی دلی پہنچے۔ بھارتیہ ششٹ منڈل نے ان کا سواگت کیا۔

0: प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलेंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। मुंबई।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुँचा। एक रिपोर्ट।
2: 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। इनमें कीचड़ बचाव सूट, गैस डिटेक्टर, श्वास यंत्र, पोर्टेबल जनरेटर, प्रकाश टावर और जल निकासी पंप शामिल हैं। पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए भारत ने डीएनए किट, अभिक्रमक और डीएनए प्रोफाइलिंग उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के मंत्री महावीर पुन को राहत सामग्री सौंपी। इस बीच भारत के विशेष सुरंग बचाव दल ने नेपाल की सेना के साथ मिलकर चिलिमे और लोंगटोंग में दो उच्च जोखिम वाले स्थलों पर संयुक्त अभियान शुरू किया। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2 से 3 दिन के भीतर पूरा होने की आशा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। केरलम में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अमरीकी ओपन पुरुष एकल सेमीफाइनल में बेन शिल्टन की टक्कर फ्रांसिस टियाफो से होगी। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शिल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए। expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद प्रियंका। भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी खबरों को कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। ब्रिक्स इंडिया सम्मेलन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार सीमा पार डिजिटल सेवा आसान करेंगे ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देशों की डिजिटल सेवाओं के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 48%, दुनिया में 5वां स्थान। राजस्थान पत्रिका का कहना है, ब्रिक्स पर भारत का बड़ा दाव, सीमा पार व्यापार और स्थानीय मुद्रा में भुगतान पर जोर। पत्र ने लिखा है, चीन से सीधी उड़ान, ईरान से चाबहार और रूस से सुखोई फाइटर पर होंगे समझौते। नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने की खबर है, कच्चा तेल $100 के पार, पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की कीमतों में तेजी से 3 महीने के निचले स्तर पर बाजार। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर वंदे मातरम के पूरे गायन पर कांग्रेस की आपत्ति के जवाब में दैनिक जागरण ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान प्रकाशित किया है, वंदे मातरम कितना और कैसे गाना है, कांग्रेस ये सहयोगियों को ना सिखाए। जनसत्ता की खबर है, ओडिशा में बालासोर के जंगल में मिले 5 वनमानुष, मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षा वनों में पाए जाने वाले इन वनमानुष के ओडिशा पहुंचने की जांच शुरू। लौटते मॉनसून से होगी राजस्थान समेत कई राज्यों में अच्छी बारिश। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 11 से 15 सितंबर तक चलेगा नया दौर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800

0: गीत है, रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: நேர்களை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 மெகாஹெர்ட்ஸ் எஃப்எம் கோல்ட் அலைவரிசை. சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगुड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें

0: 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन, ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभा सकें।
2: Women, we open their bank accounts.
3: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
2: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरणी अमरसूरिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसी पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फॉरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुंचा। 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में दोनों अमेरिकी खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमेरिकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने अमेरिकी खिलाड़ी एलेक्सिस मिशेलसन को हराया। कल महिला सिंगल सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन आर्याना सबालेंका का सामना 3री वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रखेल। The government has cleared 8 railway multi-tracking projects involving an investment of over 20,800 crore rupees. The projects are aimed at increasing line capacity, improving operational efficiency and easing congestion on key routes. Briefing the media after the cabinet meeting yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said 3 projects costing over 10,783 crore rupees will cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, adding about 656 kilometers

0: गेमिंग और जुआ प्लेटफॉर्म के बढ़ते दुरुपयोग के बारे में चेतावनी दी। और न्यूयॉर्क में अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में अमरीका के दोनों खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभा सकें। श्री गोयल ने बताया कि भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है।
1: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
0: श्री गोयल ने कहा कि लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। श्री गोयल ने सरकारों से महिला स्वामित्व वाले उद्यमों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, सम्मेलनों, सेमिनार, प्रदर्शनियों और कारोबारी मंचों में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने का भी आग्रह किया। ब्रिक्स देशों के बीच संवाद और सहयोग से सदस्य देशों, साझेदार देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता तैयार होगा। भारत इस वर्ष 21 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 7वें एग्री वोल्टैक्स विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नई दिल्ली में केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा के तालमेल को आगे बढ़ाने के लिए भारत ग्लोबल साउथ को एक आदर्श मंच प्रदान करता है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में देश की प्रगति का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता में 55 गीगावाट से अधिक की बढ़ोतरी की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरणी अमरसूर्या से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुँचा। एक रिपोर्ट।
2: 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। इनमें कीचड़ बचाव सूट, गैस डिटेक्टर, श्वास यंत्र, पोर्टेबल जनरेटर, प्रकाश टावर और जल निकासी पंप शामिल हैं। पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए भारत ने DNA किट, अर्भिक्रमक और DNA प्रोफाइलिंग उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के मंत्री महावीर पुन को राहत सामग्री सौंपी। इस बीच भारत के विशेष सुरंग बचाव दल ने नेपाल की सेना के साथ चिलिमे और लोंगटोंग में दो उच्च जोखिम वाले स्थलों पर संयुक्त अभियान शुरू किया। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2 से 3 दिन के भीतर पूरा होने की आशा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब एजेंसी बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। एजेंसी ने कहा है कि अघोषित स्थानों पर यूरेनियम के अंश मिलने को लेकर लंबे समय से चल रही जाँच में ईरान के सहयोग न

0: करने पर यह कदम उठाया गया है। एजेंसी के 35 सदस्य बोर्ड ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के पक्ष में 23 वोट पड़े, 5 विरोध में और 8 सदस्य वोटिंग से दूर रहे। ये प्रस्ताव अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पेश किया था। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ वोट दिया। ये कदम अमरीका और ईरान के बीच महीनों से जारी सैन्य टकराव और बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने देशों को वित्तीय अपराधों के लिए गेमिंग और विभिन्न जुआ प्लेटफॉर्म के बढ़ते दुरुपयोग के बारे में चेतावनी दी है। एक रिपोर्ट।
1: कार्यबल ने कहा कि अपराधी जुआ प्लेटफॉर्म का उपयोग करके बिना जुआ खेले ही धन का लेन देन कर रहे हैं। बड़ी रकम को कई छोटे लेन देनों में बांटने के साथ ही पकड़े जाने से बचने के लिए असामान्य या समन्वित दांव लगा रहे हैं। कार्यबल ने अवैध और बिना लाइसेंस वाले ऑनलाइन जुए को भी एक बड़ा जोखिम बताया है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के नए जोखिम संकेतक सरकारों, नियामकों और व्यवसायों को संदिग्ध लेन देन का पता लगाने और धन शोधन, आतंकवादी वित्त पोषण और गेमिंग तथा जुआ क्षेत्रों से जुड़े अन्य वित्तीय अपराधों से निपटने में मदद करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि उनकी इस यात्रा के दौरान सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में आगा खान नेटवर्क के साथ चल रहे सहयोग की समीक्षा की जा रही है। आगा खान विकास नेटवर्क के अध्यक्ष प्रिंस रहीम आगा खान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर इस महीने की 15 तारीख तक भारत दौरे पर हैं। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। सिक्किम में बनी फीचर फिल्म नुमा हांगमा को दूसरे नेपाल इंडिजिनस फिल्म फेस्टिवल 2026 के लिए चुना गया है। फिल्म का निर्देशन फिल्मकार नियारा सुब्बा ने किया है और इसके निर्माता एचएम सुब्बा हैं। ये महोत्सव 27 सितंबर को ब्रिटेन के लंदन में आयोजित किया जाएगा।
2: फिल्म में एक महिला के संघर्ष, चुनौतियों और दृढ़ता को दर्शाया गया है, जो पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए सफलता की ओर अपने रास्ता बनाती है। ये विभिन्न फिल्म महोत्सवों में अपनी जयजात्रा जारी रखी हुई है। इस उपलब्धि से पहले न्यूमा हांगमा ने दूसरे याकथुंग सिने अवार्ड इंटरनेशनल YCAI 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फिल्म दोनों पुरस्कार जीते है। ये समारोह 8 फरवरी को नेपाल में आयोजित हुआ था, जिसमें नियारा सुब्बा को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। मोइनाक चटर्जी, आकाशवाणी संवाद, गैंगटॉक।
0: अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में अमरीका के दोनों खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में कार्लोस अल्कराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने एरिक्सन मिशेलसेन को पराजित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमियों के लिए अवसरों का विस्तार करने में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु नियमों का पालन न करने को लेकर ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने देशों को वित्तीय अपराधों के लिए गेमिंग और जुआ प्लेटफॉर्म के बढ़ते दुरुपयोग के बारे में चेतावनी दी। और अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमरीका के दोनों खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good morning, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the World News. The headlines. India calls upon BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. India ramps up Nepal flood relief with 8th aid flight specialized tunnel team and forensic experts. IAEA refers Iran to UN Security Council over nuclear non-compliance. Financial Action Task Force warns countries about growing misuse of gaming and gambling platforms for financial crimes. And in

0: சுகமான ராகங்கள் கேட்டு ரசித்தோம். மீண்டும் திரை இசை பாடல்களை இன்று காலை 11:10 திரைகானத்தில் கேட்போம். தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள், டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल हैं। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों

0: और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
1: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
2: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
0: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कौर पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज बचाव और फॉरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का 8वां विमान काठमांडू पहुंचा। 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। तमिलनाडु में मदुरंतकम और धर्मपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होंगे। अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 19 है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच शाम 8 बजे दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. The government has cleared 8 railway multi-tracking projects involving an investment of over 20,800 crore rupees. The projects are aimed at increasing line capacity, improving operational efficiency, and easing congestion on key routes. Briefing the media after the cabinet meeting yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said three projects costing over 10,783 crore rupees will cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, adding about 656 kilometers to the existing railway network.
5: Secunderabad to Kajipet, if you look at it, it basically connects one major corridor which is towards Vijayawada and another corridor which is towards Mumbai. These two corridors get connected by this project. Already from Wadi to Secunderabad, work is going on. It has been approved earlier. And now from Hyderabad to Secunderabad to Kazipet. So the two major corridors where the connection points are Kazipet and Wadi. In between there is Secunderabad. These two corridors get connected by a quadrupled, by a four-lining corridor. So this makes a huge traffic interchange can happen between these two corridors and many trains which have to go from east to west or from south to east or from south to west, they can all

0: மெல்லிசை பாடல்கள் கேட்டோம். நேர்களை, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 MHz FM கோல்டு அலைவரிசை. நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிகளை நியூஸ் ஆனர் மொபைல் ஆப்பிலும் கேட்டு ரசிக்கலாம். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர இருப்பது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमार के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में कृषि क्षेत्र में सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने मलेशिया के कृषि मंत्री मोहम्मद बिन साबू के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत के जरिए करने पर सहमति जताई। म्यांमार के कृषि मंत्री मिननोंग के साथ बैठक में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कृषि व्यापार की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में दालें, कपास, डेयरी विकास और कृषि शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया गया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
2: Women, we open their bank accounts.
3: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
2: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
1: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कौर पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। मुंबई।
1: दिल्ली पुलिस ने 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत ये आदेश जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें ये संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा

0: महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसे हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु में मधुरंतकम और धरपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 19 सितंबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। कच्चे तेल की कीमत कल $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 105 अंक बढ़कर 74,869 जबकि निफ्टी 27 अंक बढ़कर 23,459 पर रहा। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has held high-level bilateral meetings with his counterparts from Malaysia, Timor-Leste and Myanmar. The meeting was held on the sidelines of the 9th ASEAN-India Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry in New Delhi. During his meeting with Malaysia's Agriculture and Food Security Minister, Malaysia Mohammed bin Sabu, Mr. Chauhan noted the importance of sharing knowledge, expertise and best practices. Timor-Leste's Agriculture Minister, Mr. Marcos da Cruz, expressed interest in building strong institutional mechanisms between both sides to address various challenges in agriculture and ensuring food security for the nation. Meanwhile, Mr. Chauhan held a meeting with the Agriculture Minister of Myanmar, May Naung. During the meeting, the minister noted that the Memorandum of Understanding between the two countries is at an advanced stage of finalization for strengthening the cooperation in agriculture and allied sectors. Defence Minister Rajnath Singh has described the maiden visit of Japan Air Self-Defence Force fighter aircraft to India as a significant milestone in the India-Japan defence partnership. In a social media post, Mr. Singh said it reflects both nations' growing trust and shared commitment to peace and stability in the Indo-Pacific. Mr. Singh noted that the development follows highly productive discussions held with his Japanese counterpart, Shinjiro Koizumi, in New Delhi last month. The defense minister said mutual exchange of visits, such as Exercise Veer Guardian, further strengthens this synergy. The three-day Global Dryland Congress 2026 is underway in New Delhi. The program is being held on the theme Transforming Dryland Agriculture with South-South Cooperation. Panel discussions are being held on various themes, including breeding for tomorrow, accelerating genetic gains, and climate-resilient dryland landscapes. Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan will address the Congress later in the day. Director General of the World Health Organization, WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, met Union Health Minister Jagat Prakash Nadda on the sidelines of the 79th session of the WHO Regional Committee for Southeast Asia and Delhi, Timor-Leste. Dr. Tedros congratulated Mr. Nadda on India's significant health gains, particularly in maternal and child health, and the fight against non-communicable diseases. In a social media post, the WHO Director General said through 160,000 Ayushman Arogya Mandirs, India is bringing screening for hypertension, diabetes and common cancers closer to communities with referral pathways for further care. Ahead of the BRICS Summit 2026, the Delhi police has imposed a blanket ban on the operation of drones.

0: Prime Minister Narendra Modi meets philanthropist Prince Rahim Aga Khan V in New Delhi, discusses partnership in healthcare, rural development, youth and women's empowerment. WHO Chief Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus praises India's significant health gains in maternal and child care and non-communicable diseases. Brent crude oil prices continue to trade above $100 per barrel as Iran-US conflict intensifies. Weather Department issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Odisha today. And in cricket, India to take on Bangladesh in semi-final of Women's Asia Cup in Dubai this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भी आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों तथा भारत एवं विदेश में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमार के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में कृषि क्षेत्र में

0: 26 का 7वां संस्करण मुंबई में चल रहा है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है पोटेंशियल टू इम्पैक्ट, एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय, आपस में जुड़े और वैश्विक सिस्टम। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आज तीसरा दिन है। एजेंटिक एआई एंड द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इन अ बिलियन यूजर नेशन विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि भारत में बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे और यूआईडीएआई के पूर्व चेयरमैन नंदन निलेकणी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। शाम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कनेक्टेड इंडिया एम्पावर्ड फाइनेंस बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र समिति के 79वें सत्र के दौरान हुई। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर टेड्रोस ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के करीब 160,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर की जांच की सुविधा मिल रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की भी सराहना की जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा हैं। डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि टीकाकरण और संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने भारत के तपेदिक उन्मूलन, चिकित्सा उत्पादों के बेहतर नियमन और WHO को समर्थन देने के प्रयासों की भी सराहना की। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया। एक रिपोर्ट।
4: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफार्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, VIP और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: ब्रिक्स सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है। श्री कुमार ने कहा कि वे राज्य के बूथ लेवल अधिकारियों, BLO और चुनावी साक्षरता क्लब ELC के सदस्यों से बातचीत करेंगे। श्री कुमार आज शाम अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रमुख नागरिकों के साथ भारत में चुनाव, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विषय पर संवाद करेंगे।
5: गुजरात की पावन भूमि पर आने पर मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि भी और कर्म भूमि भी रहा है गुजरात। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी और गुजरात के कर्मठ बूथ लेवल ऑफिसर्स, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, छात्र और छात्राओं के साथ आज और कल विभिन्न कार्यक्रमों में संवाद करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 270 सदस्यों वाली पूर्ण राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सूची में प्रमुख स्थान दिया है और उन्हें तमलुक संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमिलगा वित्तीय कार्यक्रम टीवीके के नेतृत्व वाले सेकुलर सोशल जस्टिस विक्ट्री गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन ने धरपुरम से सत्यबामा और मधुरंतकम से मरगथम कुमारविल को मैदान में उतारा है। विपक्षी डीएमके ने मधुरंतकम से पारदंथमन और धरपुरम से एस सुगन्या को उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए नामांकन 16 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी और 19 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1377 हो गई है। 5000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सबसे अधिक मौतें चितवन में हुई, जहां

0: 364 लोगों की जान गई। प्रभावित क्षेत्रों से 13,600 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच भारत ने विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है, जिसके तहत 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, कई नदियों का जलस्तर घट रहा है, राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक, बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। जलस्तर में कमी के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य और तेज कर दिए हैं। पटना, वैशाली, सारण, मुंगेर, भागलपुर, अरवल समेत 14 जिलों में इस समय 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से पीड़ित है। विभिन्न स्थानों पर लगाए शिविरों के माध्यम से भोजन, मेडिकल सहायता और राहत सामग्रियां प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं लगभग 700 ग्रामीण सड़कों के जलमग्न हो जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने सड़कों की स्थिति पर निगरानी बनाए रखने और पानी निकलते ही इन्हें तत्काल ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से निरीश्री।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तरी ओडिशा के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। विभाग ने आज मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट @AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से जहाजों पर किए गए सबसे बड़े हमलों के बाद आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.1% बढ़कर 101 अमरीकी डॉलर और 86 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 74,804 पर, जबकि निफ्टी 12 अंक की बढ़त के साथ 23,443 पर था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अनीता विलियम से मुलाकात की। अधिकारियों ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक क्षमताओं, प्रस्तावित रक्षा खरीद और दोनों नौसेनाओं के बीच अधिक परिचालन सहयोग के अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत ने महिला हॉकी जूनियर विश्व एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाई, जबकि सनिका चंद्रकांत माने, मधुसिदार, सुप्रिया और रोशनी एंद ने 2-2 गोल किए। भारत 12 सितंबर को सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से खेलेगा। अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में कल बेन शेल्टन का मुकाबला फ्रांसिस टियाफो से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में पिछले वर्ष के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन को हराया।

0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: நேரம் 2:30 நிமிடம்.

0: நீங்கள் இதுவரை கேட்டது திரைகானம். எஃப்எம் கோல்ட் அலைவரிசையில் சில நொடிகளில் தொடர்வது டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सतत अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के सिद्धांत पर आधारित है। श्री मोदी ने फ्रांस में आयोजित

0: अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए आज ये बात कही।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसरो ने हर मिशन और हर सफलता के साथ अपनी प्रतिष्ठा बनाई है और अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों में भारत को गौरवपूर्ण स्थान दिलाया है। भारत की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रयान 3 ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बनाया और आदित्य L1 सूर्य के रहस्यों को उजागर कर रहा है। उन्होंने वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और वर्ष 2040 तक किसी भारतीय को चंद्रमा पर भेजने के भारत के लक्ष्य पर भी बल दिया। श्री मोदी ने फ्रांस और दुनिया को भारत की अगली अंतरिक्ष यात्रा में सहयात्री बनने के लिए भी आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों और भारत तथा विदेश में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का 7वां संस्करण मुंबई में जारी है। ये दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली वार्षिक फिनटेक सम्मेलनों में से एक है। सम्मेलन का विषय है पोटेंशियल टू इम्पैक्ट एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय, आपस में जुड़े और वैश्विक सिस्टम। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से आगामी सोमवार तक दिल्ली में ड्रोन और अन्य छोटे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत इससे संबंधित आदेश जारी किया। सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिगों के सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के लिए सुरक्षा उपायों की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। याचिका में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को अनुबंध करने से रोकने की मांग की गई है। उधर नेपाल में आई अचानक विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1377 हो गई है। 5000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को लगातार मानवीय सहायता जारी रखी हुई है। और खेलों में भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाई, जबकि सनिका चंद्रकांत माने, मधुसिदार सुप्रिया और रोशनी एंद ने 2-2 गोल किए। इसके अलावा महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज रात 8 बजे दुबई में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the International Space Summit at Paris in France today.
1: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one

0: मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश ठेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति आमंत्रित कर रही है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता 4 पद, पर्यावरण अभियंता 2 पद, सहायक पर्यावरण अभियंता 11 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए रोजगार समाचार पत्र की 5 सितंबर 2026 से 11 सितंबर 2026 की प्रति। HIL इंडिया लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। अतिरिक्त महाप्रबंधक वित्त 1 रिक्ति, प्रबंधक विपणन 5 रिक्तियां, प्रबंधक वित्त 1 रिक्ति, प्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन 2 रिक्तियां तथा प्रबंधक विद्युत अभियांत्रिकी 1 रिक्ति। विस्तार निदेशालय आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। फोटोग्राफिक अधिकारी 1 रिक्ति, ज्येष्ठ अनुवादक 1 रिक्ति, सहायक विस्तार अधिकारी 1 रिक्ति, आशुलिपिक ग्रेड 1 3 रिक्तियां, फोटोग्राफर 2 रिक्तियां, उच्च श्रेणी लिपिक 9 रिक्तियां तथा स्टाफ कार ड्राइवर 1 रिक्ति। इन पदों से संबंधित विस्तृत जानकारियों के लिए देखिए विस्तार निदेशालय की वेबसाइट www.agriwelfare.nic.in तथा www.krishivistar.gov.in। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC को आवश्यकता है वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता तथा सहायक पर्यावरण अभियंता की। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 5 सितंबर से 11 सितंबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र। पत्तन प्रबंधन बोर्ड अंडमान एवं निकोबार प्रशासन श्री विजयपुरम में अनुबंध के आधार पर एक पायलट अधिकारी की नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार देख सकते हैं वेबसाइट www.andamannicobar.gov.in। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान आमंत्रित कर रहा है प्रोफेसर के 9 पदों, एसोसिएट प्रोफेसर के 7 पदों और असिस्टेंट प्रोफेसर के 43 पदों के लिए आवेदन। निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं, अनुभव, आवेदन शुल्क, अन्य विवरण एवं अद्यतन जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट cihts.ac.in/recruitment। प्रशिक्षण महानिदेशालय को आवश्यकता है एक अपर डिवीजन क्लर्क UDC की तथा एक लेखाकार खरीद सहायक की। इन पदों से संबंधित शैक्षणिक योग्यताओं, अनुभव आदि की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है इस वेबसाइट पर, जिसका पता है www.rdsdegujarat.dgt.gov.in। वेबसाइट का पता एक बार फिर से सुन लीजिए www.rdsdegujarat.dgt.gov.in। महानिदेशालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस आमंत्रित कर रहा है भारतीय नागरिकों से डिप्टी कमांडेंट ट्रांसपोर्ट के 3 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए आवेदन। इन पदों से संबंधित नियम, शर्तों, अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, पात्रता मानदंड आदि की जानकारी के लिए देखिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस की वेबसाइट www.itbpolice.nic.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम

0: बिल्कुल लव यू जिंदगी, तो कुछ गाने हैं जो हमें अपने आप से प्यार करना भी सिखाते हैं शगुन. और अगर कहें तो सबसे जो अच्छा पल होता है, जो सबसे अच्छा सुकून देने वाला होता है, वो खुद से प्यार करना ही होता है. सो लव यू जिंदगी. और इस खास दिवस पर इस साल का संदेश भी खास है कि आत्महत्या के बारे में सोच और बातचीत का तरीका बदलना. और इसके साथ ही यह अपील भी है कि बातचीत शुरू करें.
1: Well, yes, we should love our life, love ourselves first. And World Suicide Prevention Day has been observed since 2003. We're delving into the history a bit. This was actually developed by the International Association for Suicide Prevention in partnership with the World Health Organization, WHO. That will be
0: 3,000 rupees, please. And every year, 10 September, समुदायों, संगठनों और सरकारों को एक साझा सोच के साथ एक साथ लाता है कि आत्महत्या को रोका जा सकता है.
1: That is true. Well, more than 720,000 people die by suicide every year worldwide. And a tragic number.

0: Behind every number is a person, a family, a friendship, a workplace and a community affected by that loss. How disheartening.
1: और इसलिए बचाव का मतलब सिर्फ संकट के समय स्थिति से निपटना नहीं है, इसका मतलब एक ऐसा समाज बनाना है जहां लोग बिना किसी डर, शर्म या लोगों की राय की परवाह किए बिना अपनी भावनात्मक तकलीफ के बारे में बात कर सके। और इस साल का संदेश भी हमसे यही करने को कहता है कि आत्महत्या के बारे में हमारी बातचीत का तरीका बदलना। तो बातचीत शुरू करें, यानी कि स्टार्ट द कन्वर्सेशन का असल में क्या मतलब है?
0: स्टार्ट द कन्वर्सेशन, वेल इट मींस noticing when someone may be struggling. You have to be empathetic to actually notice people who are hiding their pain and having the courage actually to check in. You don't need to be a psychologist for that, hai na? That's for sure. Bilkul. And you don't need to have all the answers. You just simply have to say, I've noticed you've been having a difficult time, or do you want to talk?
1: Ya phir aap pooch sakte hain ki aap asal mein kaisa mehsoos kar rahe hain.
0: And actually, most of the times, the most important thing that you can do is to listen. Listen without judging. Let the person speak. Let the person finish. And don't tell someone to simply be strong or forget about it. It's not that easy sometimes.
1: बिल्कुल, इसके बजाय उन्हें हमें यह बताना है कि उनकी भावनाएं भी मायने रखती हैं। उन्हें अकेले इसका सामना नहीं करना है और मदद भी हमारी तरफ से हमेशा उपलब्ध है।
0: Well, as you are saying it, it is reminding me as well. Right, and our listeners should also take a note of it that there may not always be an obvious sign that someone is struggling, right? But changes in behavior, mood or communication, the way they communicate, can sometimes indicate that a person needs support. Well, now let's listen in to a dialogue from the movie Dear Zindagi in voice of Shah Rukh Khan. Listen in.
2: Jab hum apne aap ko achhi tarah samajh lete hain to dusre kya samajhte hain, it doesn't matter, not at all. हम अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में नहीं लेंगे तो कोई दूसरा ड्राइवर सीट पर बैठ जाएगा।
0: ट्रू, दैट इज ट्रू।
1: बिल्कुल, और जैसे हमने भी कहा कि खुद से प्यार करना चाहिए, तो हमें ये परवाह करना ही छोड़ देना चाहिए कि गैर या दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि निराशा या फिर फंसा हुआ, या फिर जब भी आप बेबस महसूस करें तो खुद को बोझ नहीं समझना है।
0: Also, you can actually notice the changes that we have been talking about in a person's behavior. It can be talking about death or suicide, or even they can say that they don't want to be alive. Such serious matters and serious conversations, they can help the person to cope up, and they even start withdrawing from friends or families or activities that they once enjoyed. It is a very, very

0: seriously. And if you are worried about someone, something, just start with care.
1: बिल्कुल. और अगर आप किसी के बारे में केयर कर रहे हैं, किसी को लेके परेशान हैं कि वो कुछ अलग कर रहा है, तो उससे पूछें, उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को गंभीरता से लें, उनसे जुड़े रहें. और कभी कभी एक मैसेज, फ़ोन कॉल या बस किसी के साथ बैठना भी हमारी सोच से कहीं ज़्यादा मायने रखती है.
0: And you can encourage them to speak with a mental health professional, counselor, doctor or helpline. And if someone is in immediate danger, do not, at all times, do not leave them alone. You can seek emergency assistance or take them to the nearest emergency medical facility. They will be given the necessary help. And if someone tells you they're thinking about suicide, don't promise to keep it a secret. Their safety comes first. Yeah.
1: बिल्कुल. तो आइए यह भी देखें कि भारत में क्या हो रहा है, यानी कि हमारे देश में क्या हो रहा है. और सरकार ने 2022 में देश की पहली नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, यानी कि आत्महत्या रोकथाम रणनीति शुरू की थी. इसका मकसद कई क्षेत्रों को शामिल करने वाले तरीके से 2030 तक आत्महत्या से होने वाली मौतों को 10% तक कम करना है. इस रणनीति में कई उपाय शामिल हैं, जैसे कि शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य की जांच, संकट के समय मदद के लिए हेल्पलाइन, मनोवैज्ञानिक सहायता, समुदाय में जागरूकता कार्यक्रम और कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े उपाय.
0: And there is an important national mental health support service that people should know about. It's called TeleManas. The service provides 24/7 tele mental health support. In India, you can call number 1-14416 or 18 alternatively 1-800-891-4416 for mental health support.
1: और अगर आप या आपका कोई जानने वाला किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो मदद मांगना कमजोरी नहीं है. याद रखना कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है, मदद मांगना असल में सहारे की ओर एक कदम है. युवाओं को भी ऐसी जगहों की जरूरत है जहां वे तनाव, असफलता, रिश्तों, अकेलेपन या फिर भावनात्मक मुश्किलों के बारे में खुलकर बात कर सके.
0: एंड वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2026 comes with a simple but consequential message. Starting a conversation can be the beginning of support.

0: और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या कुछ खास है। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां आज पोरा पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पोरा छत्तीसगढ़ की कृषि संस्कृति और परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ पर्व है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे रायपुर संवाददाता की रिपोर्ट।
1: छत्तीसगढ़ में आज पोरा पर्व के अवसर पर किसान अपने जीवन में विशेष स्थान रखने वाले पशुधन और कृषि उपकरणों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। विशेष रूप से बैलों का पूजन किया जा रहा है। खेती के काम में किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले बैल केवल पशुधन नहीं बल्कि ग्रामीण जीवन और कृषि परंपरा के अभिन्न अंग माने जाते हैं। आज घरों में पारंपरिक पकवान बनाए जा रहे हैं, वहीं बच्चे मिट्टी से बने बैलों और अन्य पारंपरिक खिलौनों के साथ पोरा की खुशियां बांट रहे हैं। गांवों में परिवार और पड़ोसी मिलकर इस पर्व को उत्साह पूर्वक मना रहे हैं। पोरा पर्व हमें अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का संदेश देता है। यह किसान के श्रम, पशुधन के महत्व और प्रकृति के प्रति सम्मान को रेखांकित करता है। बदलते समय के बीच भी पोरा पर्व छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की उस जीवंत परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें माटी से अपनापन, श्रम का सम्मान और रिश्तों की मिठास समाई हुई है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
2: From Chhattisgarh now, we will head to Vishakhapatnam, which is set to host the 41st Indian Association of Tour Operators annual convention from today. The convention is expected to bring together around 900 to 1,000 tourism professionals, tour operators, policy makers and government representatives from across India and abroad. We have more details on this from our correspondent.
3: This IATO convention is organized under the theme of India, the world's next tourism opportunity, reflecting the India's focus.

0: Focus on expanding India's position as a major global tourism destination. The event is being organized with the support of the government of Andhra Pradesh and is designed to showcase the state tourism potential to a national audience. A major attraction will be presentation of Andhra Pradesh diverse tourism destinations including Visakhapatnam, Arku Valley and other cultural and heritage circuits. Post-convention, tours have been planned to destinations such as Bojanakonda, Arku Valley, Borra Caves as well as other locations in Andhra Pradesh and neighboring regions. Earlier, Andhra Pradesh Tourism Minister Kandula Durgesh has said that hosting the event will help position the state as a major global tourism destination and provide local stakeholders with great access to business opportunities. This prestigious event will welcome Union Minister for Tourism and Culture Gajendra Singh Shekhawat as the chief guest for its grand inauguration. Highlighting a strong commitment to responsible tourism, the convention offers massive concessions to local business, including a complete waiver of 10,000 rupees IATO one-time admission fee and free IATO member ships for Andhra Pradesh tour operators. Satyanarayana for Parikrama from Visakhapatnam.
1: So Jaya, as we know, New Delhi is transforming ahead of the 18th BRICS summit with heightened security, traffic restrictions, tightened airspace and a major city facelift, right?
2: बिल्कुल शगुन, और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. आज से इस महीने यानी कि 14 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफॉर्म के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत ये आदेश जारी किया है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. और यह ब्रिक्स सम्मेलन 22 और 13 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है.
1: एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 7th एडिशन ऑफ द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2026. वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनुअल फिनटेक कॉन्फ्रेंसेस इज अंडरवे इन मुंबई. द थीम ऑफ GFF 2026 It is actually potential to impact agentic AI, tokenization, quantum, trusted, connected global systems for inclusive finance. Let's hear more details from our correspondent.
3: Today is the third day of the Global FinTech Fest in Mumbai. Addressing a session titled Agentic AI and the Future of Banking in a Billion User Nation, State Bank of India Chairman C.S. Shetty said that the next phase of India's banking transformation will be driven by artificial intelligence. RBI Governor Sanjay Malhotra, SEBI Chairman Tuhinkanta Pandey and former UIDAI Chairman Nandan Nilekani are scheduled to address various sessions on Agentic AI, tokenization and quantum technology today.
2: भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने महाराष्ट्र में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 शुरू करने की घोषणा की है. चयनित युवाओं को नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने और विकसित भारत एट 2047 के विजन में योगदान देने का अवसर मिलेगा. स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव के पुनर्गठन के अंतर्गत ये कार्यक्रम शुरू किया गया है. इसका उद्देश्य युवाओं को नवाचार और समाधान से जुड़े विचार प्रस्तुत करने के लिए पारदर्शी योग्यता आधारित मंच उपलब्ध कराना है. हमारे संवाददाता से और ब्यौरा.
4: महाराष्ट्र में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 का राज्य स्तरीय आयोजन 2 दिवसीय होगा. महाराष्ट्र को गोवा के साथ कोंकण फाइनेंशियल एंड क्रिएटिव इकोनॉमी रीजन में शामिल किया गया है. इस क्षेत्र का मुख्य विषय भारत की रचनात्मक सांस्कृतिक पर्यटन और नवाचार क्षमताओं का उपयोग कर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और समावेशी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है. इस बारे में बताते हुए माई भारत के डेप्यूटी डायरेक्टर अनूप इंगोले बताया.
5: युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद 2027 की शुरुआत की गई है. इसमें 15 से 29 वर्ष के युवा अपनी नवाचारपूर्ण सोच, नेतृत्व क्षमता और नए विचार प्रस्तुत कर सकेंगे. चयनित युवाओं को नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री के सामने अपने विचार रखने का अवसर मिलेगा.
4: विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 के 6 प्रमुख ट्रैक है. विकसित भारत चैलेंज, कल्चरल ट्रैक, डिजाइन फॉर भारत, हैक फॉर सोशल कॉज, यूथ एंटरप्रेन्योर्स चैलेंज और यूथ पार्लियामेंट. चयन प्रक्रिया विकसित भारत क्विज, निबंध चुनौती, जिला चैंपियनशिप, राज्य स्तरीय विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग और राष्ट्रीय विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के विभिन्न चरणों से होकर गुजरेगी. महाराष्ट्र में जिला स्तर पर युवा क्षेत्रीय विषय के अनुरूप स्थानिक प्राथमिकताओं और अवसरों पर प्रस्तुतियां देंगे.

0: वरिष्ठ पुरातत्वविद प्रोफेसर ब्रजबासी लाल यानी बीबी लाल जी को आज उनकी पुण्यतिथि है। 101 साल का लंबा और ऐतिहासिक जीवन जीने वाले प्रोफेसर लाल ही वो शख्स थे जिन्होंने 1970 के दशक में अयोध्या के विवादित ढांचे के नीचे मंदिर के खंभों के होने की पुरातात्विक खोज की थी, जिसने भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया।
1: Well, he was the Director General of the Archaeological Survey of India between 1968-1972 and has worked extensively on archaeological sites. Jay also told you this was associated with Harappan civilization and Mahabharat.
0: जी, इसी के साथ हम याद कर रहे हैं बच्चों के चहेते और बंगाल के मशहूर उपन्यासकार तथा कवि सुकुमार राय जी को, जिन्होंने अपनी कविता और कहानियों से न जाने कितने बचपन सवारे हैं। बंगाली साहित्य के स्तंभ सुकुमार राय जी की आज पुण्यतिथि है। शायद बहुत कम लोग इन्हें ऑस्कर विजेता फिल्म मेकर सत्यजीत रे के पिता के रूप में जानते होंगे, लेकिन सुकुमार राय जी खुद में यानी कि अपने आप में एक ऐसी संस्था थे जिन्होंने भारतीय बाल साहित्य का चेहरा बदल दिया। तो आइए सुकुमार राय जी की पुण्यतिथि पर उनके उस जादुई बचपन के संसार में गोता लगाते हैं और सुनते हैं उनकी कलम से निकला ये बेहद लोकप्रिय और सदाबहार बाल गीत बाबूराम सापुरे।

0: आज ही हिंदी साहित्य जगत के शैली सम्राट कहे जाने वाले महान कथाकार राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी की जयंती है। बिहार के सूर्यपुरा रियासत के राजा होने के बावजूद उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदी गद्य को सजाने और संवारने में लगा दिया। उनकी भाषा में ऐसी नजाकत और शिल्प था कि पाठक उनकी लिखी कहानियों को शुरू से अंत तक पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते थे। साल 1913 में प्रकाशित उनकी अमर कहानी कानों में कंगना आज भी हिंदी साहित्य की सबसे बेहतरीन और कालजयी प्रेम कहानियों में गिनी जाती है।
1: Today, well, we are also remembering Tommy Overstreet, the country musician, and he has often referred to as TO by fans and radio disc jockeys as well.

0: अब रुख करते हैं भारतीय सिनेमा के ऐसे नायाब हीरे की तरफ जिन्होंने अपनी अदाकारी से हर किरदार को जीवंत कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दो बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता अतुल कुलकर्णी की। आज इनका जन्मदिन है। और श्रोताओं, जब हम अतुल कुलकर्णी की बात करते हैं तो फिल्म रंग दे बसंती के उस लड़के को कोई कैसे भूल सकता है। तो आइए इसी फिल्म के आइकॉनिक गाने को सुनते हैं।
1: मैं चल गया सूरज को मैं।
0: और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो परिक्रमा के संग को यहीं समाप्त करने का अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रहे हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे It saves life on earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से

0: भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति शी 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वैश्विक अस्थिरता, पश्चिम एशिया में संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये यात्रा ब्रिक्स सहयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से सोमवार तक राजधानी में ड्रोन और अन्य छोटे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत ये आदेश जारी किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में स्टार्टअप, वैज्ञानिक, उद्योग, उद्यमी और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारक एक मंच पर आएंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने दूरदराज और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में भरोसेमंद बिजली विकल्प उपलब्ध कराने में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री नाइक ने आज भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी के पूर्वावलोकन कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में उल्लेखनीय बदलाव आया है। और खेलों में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज रात 8 बजे दुबई में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। और भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में भी अपना स्थान पक्का कर लिया है। अब 12 सितंबर को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: நேரம் 6:05.
2: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷவாணியின் சென்னை எஃப்எம் கோல்டு 100.1.
1: எஃப்எம் கோல்டு அலைவரிசையில் நிகழ்ச்சி நிரலை கேட்கும் முன்,
3: எவ்ரி கிரேட் ஜேர்னி பிகின்ஸ் வித் பீப்புள் கம்மிங் டுகெதர் டு லிசன், டு லேர்ன், டு இமேஜின் வாட்ஸ் பாசிபிள். திஸ் இஸ் த பிரிக்ஸ் 2026. A moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS

0: 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: எஃப்எம் கோல்ட் அலைவரிசையில் இந்த அறிவிப்பினை தொடர்ந்து 6:10 விஸ்லேஷன், 6:30 11:10 மார்க்கெட் மந்த்ரா, 7:10 பட்ஸ் அண்ட் பிளாசம்ஸ், ப்ரொடெக்ட் அவர் இன்வெசிபிள் லைஃப் லைன் எல் அனன்யா வழங்கும் உரை, மெமரபிள் ஸ்டோரி சொல்பவர் கே பிரியங்கா, மியூசிக்கல் டேலண்ட் எஸ் சகஸ்ரா பாட்டு, நாலேஜ் த ட்ரெஷர் வி நெவர் லாஸ் பி வைஷ்ணவி வழங்கும் உரை, 7:50 செய்தி கதம்பம், 8:10 திரைகாணம், 9:15 ஸ்பாட்லைட், 9:30 கண்ட்ரி வைடு, 9:45 இன்சைட்ஸ், 10:10 விஸ்வதர்பன், 10:20 வேர்ல்டு நியூஸ், 10:30 வெஸ்டர்ன் மியூசிக், 11:40 திரைகாணம். நள்ளிரவுக்கு பின் 12:10 இரவின் மடியில், 1:10 நினைவில் நின்றவை, 2:10 நெஞ்சம் மறப்பதில்லை, 3:10 இனிய ராகம், கேஷவ் கிடேன் அவர்களின் புல்லாங்குழிசை, தொடர்ந்து சித்தேஸ்வரி தேவி அவர்கள் வழங்கியுள்ள தப்பா, 4:10 பொங்கு மங்கலம், அம்பத்தூர் AM சுதாகர் அவர்களின் நாகஸ்வர இசை, ஜி கே நரசிம்மன் அவர்கள் தவில், 5:10 புலரும் பொழுது, 6:10 தேனிசை, 7:15 திரை இசை, 7:30 ஆட்சவேரே, 8:30 திரைகாணம், 9:00 அரங்கிசை, சேஷம்பட்டி டி சிவலிங்கம் அவர்களின் நாகஸ்வர இசை, வடபழனி எஸ் ராஜாராம் அவர்கள் தவில், 10:10 விஸ்வதர்பன், 10:20 வேர்ல்டு நியூஸ், 10:30 சுகமான ராகங்கள், 11:10 திரைகாணம், 11:30 மல்லைப்பூத்தண்டா, 12:00 திரைகாணம், 12:40 மெல்லிசை, 1:10 இசைமலர், எஸ் கீர்த்தனா அவர்களின் பாட்டு, ஆர் சுவாதிஸ்ரீ அவர்கள் வயலின், வி பாலாஜி அவர்கள் மிருதங்கம். நிகழ்ச்சி நிரல் கேட்டீர்கள். தொடர்வது டெல்லி அஞ்சல்.
2: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण.
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है. मैं हूं कनकलता. श्रोताओं, किसी भी देश का भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता से तय होता है. ऐसे में स्कूल सिर्फ बच्चों को पढ़ाने की जगह नहीं, बल्कि उनके ज्ञान, कौशल, सोच और व्यक्तित्व के विकास की आधारशिला होते हैं. इसी दृष्टिकोण को स्कूल स्तर पर लागू करने की दिशा में 7 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी PM-SHREE योजना शुरू की गई. इस योजना का उद्देश्य देश भर में 14,500 से अधिक मौजूदा स्कूलों को आदर्श और उत्कृष्ट स्कूलों के रूप में विकसित करना है. श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि PM-SHREE योजना की जरूरत क्यों महसूस हुई, इन स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में कैसे विकसित किया जा रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को यहाँ किस तरह लागू किया जा रहा है, और इन स्कूलों से आसपास के दूसरे स्कूलों में भी बदलाव लाने की क्या उम्मीद है. श्रोताओं, भारत में स्कूली शिक्षा का दायरा बहुत बड़ा है. देश में 14,71,000 से अधिक स्कूल हैं, जहां 24,69,00,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं. इतने बड़े शिक्षा तंत्र में केवल कुछ स्कूलों की सुविधाएं बेहतर करना पर्याप्त नहीं है. जरूरत ऐसे संस्थानों की है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ नई शिक्षण पद्धतियों, तकनीक, समावेशिता और संवहनीय विकास का उदाहरण भी पेश कर सकें. PM-SHREE योजना इसी सोच को स्कूल स्तर पर लागू करने की पहल है. आइए अब विस्तार से समझते हैं कि PM-SHREE स्कूलों की परिकल्पना क्या है और इस योजना के तहत अब तक किस तरह की प्रगति हुई है.
4: श्रोताओं, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी PM-SHREE एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है. योजना की शुरुआत 7 सितंबर 2022 को

0: हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके उन्हें ऐसे आदर्श संस्थानों के रूप में विकसित करना है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने का उदाहरण पेश करें। पीएम श्री योजना के अंतर्गत 14,500 से अधिक स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कुल 27,360 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान भी किया गया है। योजना के तहत स्कूलों में सिर्फ भवन और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर नहीं दिया जा रहा बल्कि सीखने का सुरक्षित स्वागतपूर्ण और उत्साह बढ़ाने वाला वातावरण तैयार करने पर इस योजना का जोर है। जुलाई 2026 तक 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13,092 स्कूलों का चयन पीएम श्री स्कूलों के तौर पर किया जा चुका है। इनमें केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के अंतर्गत आने वाले स्कूल भी शामिल हैं। पीएम श्री स्कूलों को केवल अपने विद्यार्थियों तक सीमित संस्थान नहीं माना गया है, इन्हें अपने क्षेत्र के लिए मॉडल के तौर पर विकसित किया जा रहा है ताकि ये आसपास के स्कूलों के साथ अपने अनुभव और बेहतर तौर तरीके साझा कर सकें। मार्गदर्शन, सहयोग और क्लस्टरिंग के माध्यम से इन स्कूलों से व्यापक स्तर पर बदलाव लाने की परिकल्पना की गई है। यानी एक स्कूल में विकसित होने वाली अच्छी शिक्षण पद्धति और व्यवस्थाएं धीरे धीरे आसपास के दूसरे स्कूलों तक भी पहुँचें। इन स्कूलों में शिक्षा को केवल पाठ्यपुस्तक और परीक्षा तक सीमित रखने के बजाय सीखने के अधिक व्यापक अनुभव पर जोर दिया जाता है। अनुभवात्मक और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा के साथ शुरुआती वर्षों में खेल और खिलौनों के माध्यम से सीखने को बढ़ावा दिया जाता है। बस्ता मुक्त दिनों, स्थानीय कारीगरों के साथ इंटर्नशिप, स्थानीय कला और शिल्प के अध्ययन तथा पारंपरिक ज्ञान से जुड़ी गतिविधियों को भी इसके अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करने में सक्षम बनाना है। पीएम श्री स्कूलों में गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समावेशी शिक्षा भी है। अलग अलग सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ शुरुआती कक्षाओं में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जाता है। इस तरह पीएम श्री स्कूलों की अवधारणा में शिक्षा को स्थानीय आवश्यकताओं और भाषाई विविधता से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है।
1: श्रोताओं, पीएम श्री स्कूलों की अवधारणा का अगला महत्वपूर्ण पक्ष है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को स्कूल के रोजमर्रा के वातावरण में उतारना। इसके लिए शिक्षा के साथ तकनीक कौशल, खेल कला, जीवन कौशल और शिक्षक प्रशिक्षण जैसे पहलुओं को भी स्कूल विकास का हिस्सा बनाया गया है। आइए अब जानते हैं कि पीएम श्री स्कूलों में इन क्षेत्रों पर किस तरह काम किया जा रहा है और स्कूलों का चयन किन गुणवत्ता मानकों के आधार पर किया जाता है।
2: श्रोताओं, पीएम श्री योजना के केंद्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का दृष्टिकोण है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के साथ साथ 21वीं सदी के जरूरी कौशल विकसित करने पर जोर दिया जाता है। सीखने का वातावरण ऐसा बनाने का प्रयास है जिसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लें और उन्हें सुरक्षित, समावेशी और सहयोगी माहौल मिले। तकनीक भी इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएम श्री स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT सुविधाओं, स्मार्ट क्लासरूम, इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म और स्टेम जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। दीक्षा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता और उनके आदान प्रदान को आसान बनाते हैं। इससे डिजिटल साक्षरता के साथ साथ तकनीकी दक्षता, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान जैसे कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा का दायरा खेल कला और जीवन कौशल तक भी बढ़ाया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के भीतर नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता, सामाजिक और भावनात्मक कौशल तथा संवाद की क्षमता को विकसित करना है। यानी विद्यार्थी केवल परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार ना हो बल्कि भविष्य की शैक्षिक, पेशेवर और सामाजिक चुनौतियों के लिए भी सक्षम बने। इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षक और स्कूल नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण है। पीएम श्री स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के व्यावसायिक विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों यानी DIET के माध्यम से क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। प्रधानाचार्यों को शैक्षिक नेतृत्व, स्कूल प्रबंधन और योग्यता आधारित शिक्षण योजना से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। करता है। शिक्षकों को समग्र प्रगति कार्ड, स्कूल सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण तथा अन्य क्षेत्रों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। श्रोताओं, पीएम श्री स्कूलों की एक और विशेषता है, इनका चयन गुणवत्ता मानकों के आधार पर किया जाना।

0: इसके लिए चैलेंज मोड अपनाया गया है। चयन की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। पहले चरण में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU हस्ताक्षर करते हैं। दूसरे चरण में UDISE+ के आंकड़ों और निर्धारित मानकों के आधार पर पात्र विद्यालयों की पहचान की जाती है। तीसरे चरण में पात्र विद्यालय चैलेंज आधारित चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं और निर्धारित मानकों को पूरा करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय विद्यालय संगठन या नवोदय विद्यालय समिति के अधिकारी निरीक्षण के माध्यम से शर्तों के पूरा होने की पुष्टि करते हैं और चयनित विद्यालयों की सूची की सिफारिश शिक्षा मंत्रालय से की जाती है। अंतिम चयन के लिए शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। चयन के लिए स्कूलों को कुछ न्यूनतम मानक पूरे करने होते हैं। इनमें पक्की इमारत, सुरक्षित और सुगम आवागमन, सुरक्षा उपाय, अलग अलग शौचालय, पीने का पानी, हाथ धोने की सुविधा और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा पुस्तकालय या खेल सुविधाएं, पर्याप्त नामांकन और शिक्षकों के लिए पहचान पत्र जैसी व्यवस्थाएं भी चयन के मानकों का हिस्सा हैं। चैलेंज विधि के तहत शहरी क्षेत्रों के स्कूलों को न्यूनतम 70% और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को न्यूनतम 60% अंक हासिल करना जरूरी है। इस मूल्यांकन में अवसंरचना के साथ साथ सीखने के परिणाम, शिक्षण शास्त्र, पीएम पोषण, व्यवसायिक शिक्षा, हरित पहल और विभिन्न हितधारकों की प्रतिबद्धता जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है।
1: श्रोताओं, पीएम श्री योजना के माध्यम से स्कूलों को हरित बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। स्कूलों की गुणवत्ता के एक महत्वपूर्ण मानक के रूप में पर्यावरण के अनुकूल तौर तरीकों को बढ़ावा दिया जाता है। इसी तरह स्थानीय उद्यमिता इकोसिस्टम से जुड़ाव और 21वीं सदी के कौशलों पर जोर विद्यार्थियों को भविष्य की दुनिया के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम श्री योजना केवल कुछ स्कूलों को बेहतर बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे मॉडल विकसित करने की कोशिश है जिन्हें दूसरे स्कूल भी अपना सकें। आखिरकार किसी शिक्षा व्यवस्था की सफलता केवल स्कूलों की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि वहाँ पढ़ने वाला बच्चा कितना सीखता है, कितना सोचता है, अपने ज्ञान का कितना इस्तेमाल कर पाता है और भविष्य की चुनौतियों के लिए कितना तैयार होता है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक अरुण दीप सिंह। नमस्कार।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। पेरिस नगरे अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्ष सम्मेलनं सम्बोधितवान् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। वैज्ञानिक तथ्यानां उपयोगे पारदर्शितायाः सत्यनिष्ठायाश्च आवश्यकतामपि प्राधान्येन असौ प्रास्तौत्। नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः लोकहितैषिणा प्रिंस रहीम आगा खान पञ्चमेन सह सञ्जाता मन्त्रणा। अत्रावसरे स्वास्थ्यरक्षायां ग्रामीणाभिवृद्धौ युवमहिलासशक्तिकरणे च सहभागितायै जातः विचारविनिमयः। मातृशिशुकल्याणक्षेत्रे अथ असञ्चारिरोगाणां नियन्त्रणे भारतस्य अभूतपूर्व स्वास्थ्योपलब्धिः भूरिशः प्रशंसयत् विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनस्य महानिदेशकः डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस इत्यसौ। अद्य ओडिशा राज्ये तीव्रात अतितीव्रवृष्ट्यै ऋतुविज्ञान विभागेन रक्तसंचेतना प्रख्यापिता। अपि च महिला एशिया चषक प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे भारतीय दलं दुबई नगरे अद्य सायं बांग्लादेश दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उद्घोषितं यत् भारतम् अन्ताराष्ट्रिय विधेः संवादस्य बहुपक्षीय सहयोगस्य च आधारेण सुरक्षितस्य शान्तिपूर्णस्य शाश्वतस्य च अन्तरिक्षमण्डलस्य दृढं समर्थनं विधत्ते। असौ अवोचत् यत् वैज्ञानिकतथ्यानि पारदर्शी सत्यनिष्ठतया समग्रलोककल्याणाय विनियुक्तानि भवेयुः। प्रधानमंत्री फ्रांस देशस्य पेरिस नगरे आयोजिते अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल।
1: और सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार।
0: Benchmark domestic stock market indices rise marginally. Sensex adds over 100 points. Nifty settles above 23,450. RBI Governor Sanjay Malhotra says fintech companies should treat customer data as a fiduciary responsibility rather than as a business asset. And global crude oil prices surge around 4%. Brent crude trades above $100 a barrel.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त। सेंसेक्स में 100 से अधिक अंकों की तेजी। निफ्टी 23,450 के ऊपर बंद हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने फिनटेक कंपनियों से कहा कि उन्हें कस्टमर डेटा को एक व्यावसायिक संपत्ति के स्थान पर अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में करीब 4% का उछाल। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर।
0: And before we take our main stories in detail, here is a very important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार

0: के मुख्य सूचकांकों में आज 0.2% की बढ़ोतरी हुई, जिससे लगातार 3 दिन की गिरावट का सिलसिला थम गया। सेंसेक्स 138 अंक बढ़कर 74,903 पर बंद हुआ। निफ्टी 46 अंक ऊपर आकर 23,478 पर पहुंच गया। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक 0.4% नीचे आया और स्मॉल कैप सूचकांक 0.1% गिर गया। इससे पहले बाजार आज सपाट स्तर पर खुले और पूरे सत्र के दौरान उतार चढ़ाव का दौर चलता रहा। हालांकि क्लोजिंग ऑक्शन सत्र के दौरान सूचकांक गिरावट से उबरकर बढ़त की स्थिति में देखे गए।
1: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड 0.2% हायर टुडे, स्नैपिंग अ 3-डे लूजिंग स्ट्रीक। सेंसेक्स गेन 138 पॉइंट्स टू क्लोज एट 74,903। निफ्टी एडेड 46 पॉइंट्स टू सेटल एट 23,478। However, in the broader market on the NSE, the mid-cap 100 index declined by 0.4% and the small-cap 100 index dipped by 0.1%. Earlier, the markets opened on a flat note and oscillated between gains and losses throughout the session. However, during the closing auction session, the indices rebounded from the red into positive territory.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 15 कंपनियों के शेयरों में आज बढ़त दर्ज की गई। सबसे ज्यादा उछाल वाली कंपनियों में पावरग्रिड 2.3%, एक्सिस बैंक 1.6% और अल्ट्राटेक सीमेंट 1.4% ऊपर चढ़े। वहीं दूसरी तरफ एचसीएल टेक में 2.4%, टाटा स्टील में 1.4% और ट्रेंट में 1.1% की गिरावट देखी गई।
1: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 18 out of the 28 sectors edged downward. Among the top underperformers, capital goods lost 1%, telecommunications dropped 0.9% and metals fell by 0.7%. In contrast, insurance advanced at 0.6%, top 10 banks gained 0.5% and BankEx added 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,502 companies declined, 1,826 companies advanced and 199 companies remain unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के तुलना में 34 पैसे गिरकर 95.45 रुपए पर बंद हुआ। पुनित, कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज देखा हमने कि शेयर बाजार में 3 दिनों की गिरावट का सिलसिला थमा और 0.2% की बढ़ोतरी हुई। क्या ये मरहम का काम करेगा या और कोई स्थिति हम सामने देख पा रहे हैं या और जो वैश्विक परिस्थितियां हैं कैसा असर उस पर डालेंगी?
2: तो निखिल, हालांकि मैं कहना चाहूँगा कि महरम का अगर काम करे आज का बाज़ार की थोड़ी जो मामूली बढ़त थी, पर ऐसा नहीं है। बाज़ार आज काफ़ी वोलाटाइल था, ऊपर नीचे का दौर रहा बाज़ार में और जो हम बढ़त देख रहे हैं वो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में थोड़ा टेक्निकली बाज़ार ऊपर बंद हुआ। लेकिन जो आपने आंकड़े पढ़े उसमें जो ब्रॉडर मार्केट की जो ब्रेथ की बात करी, यानी ज़्यादातर अगर आप देखें तो शेयर्स में गिरावट थी और बहुत कम शेयर्स में बढ़त थी। तो कुल मिलाकर जो अंडरलाइंग ट्रेंड है अभी भी बाजारों में वो वीक है, कमज़ोर है। अभी बहुत बड़ा हम निवेश नहीं देख रहे हैं, पर्टिकुलरली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं दोबारा से उन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पे सेलिंग शुरू कर दी है। और उसका मुख्य कारण देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो फैक्टर्स हैं, खासतौर से मैं कहूँगा जो कच्चे तेल की कीमतें हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, वो काफ़ी बढ़ रही हैं और जब तक वो कंट्रोल में नहीं आएंगे और उसकी वजह से जो एक तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दूसरा जो बॉन्ड यील्ड्स हैं यानी इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी ऊपर की तरफ बढ़त है। तो कुल मिलाकर सारे फैक्टर्स इस वक्त बाजार पर दबाव डाल रहे हैं, तो मुझे लगता है जो अंडरलाइन ट्रेंड है वो शॉर्ट टर्म में वीक ही रहेगा।
0: लेकिन इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में जो गिरावट आई उसके लिए आप क्या कहेंगे?
2: देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी बढ़त थी और वो आउट परफॉर्म कर रहे थे लार्ज कैप्स को। इनफैक्ट हेडलाइन नंबर्स जब भी हम देखते थे, जो निफ्टी और सेंसेक्स के नंबर्स देखते थे, तो वहाँ पर हम देखते थे कि गिरावट होती थी, लेकिन तब भी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में बाइंग होती थी। पर्टिकुलरली अगर हम देखें, आप आगे आंकड़े देखेंगे तो जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो ज़्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ रुझान उनका है। तो पर मुझे लगता है आज प्रॉफिट बुकिंग हुई उसके अंदर, क्योंकि काफ़ी शेयर्स में हम देख रहे थे काफ़ी गेंस आ रहे थे, तो नेचुरली जो अंडरलाइंग ट्रेंड है अगर वीकनेस का है तो प्रॉफिट बुकिंग होगी और मिड कैप में आज वही था।
1: वी आर सीइंग दैट डीआईआईज हैव कंटिन्यूड टू सपोर्ट द मार्केट। देयर इज आल्सो द स्टोरी ऑन द एम्फी डेटा फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट, वेयर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैव इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट बाय 19 percent. So we see institutional investors play a very important role in supporting the market right now. But the biggest concern is this overall sentiment basically on inflation, especially imported inflation, what's going on in the Strait of Hormuz. How do you see the market changing? Because Jefferies is saying that

0: मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपका मेन मुख्य सवाल था कि इन्वेस्टर्स का क्या रुख रहना चाहिए आईटी सेक्टर के शेयर्स की तरफ, तो मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस भारत के आईटी सेक्टर में रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और मुझे आई थिंक वी शुड कंटिन्यू टू इन्वेस्ट ग्रेजुअली एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म पोजीशंस इन आईटी।
1: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। भारतीय इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगस्त महीने के दौरान निवेशकों का भरोसा और बढ़ा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI के आंकड़ों के अनुसार अगस्त में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करीब 19% बढ़कर 29,329 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि जुलाई में ये 24,697 करोड़ रुपए था। वहीं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरिए निवेश ने भी नया रिकॉर्ड बनाया और अगस्त में यह बढ़कर 32,297 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इक्विटी फंड की श्रेणियों में स्मॉल कैप फंड निवेशकों की पहली पसंद रहे, जिनमें करीब 8,000 करोड़ रुपए का निवेश आया। इसके बाद मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड का स्थान रहा। हालांकि लार्ज कैप और इक्विटी फंड सेविंग स्कीम यानी ELSS फंड से 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी दर्ज हुई। दूसरी ओर गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी गोल्ड ETF में निवेश भी 66.6% से ज्यादा बढ़ा और इसमें लगातार तीसरे महीने निवेश सकारात्मक रहा। हालांकि डेट फंड में तस्वीर इसके उल्टी रही, जहां जुलाई में 1,87,000 करोड़ रुपए का भारी निवेश आया था, वहीं अगस्त में डेट फंड से 8,127 करोड़ रुपए की निकासी हुई है। कुल मिलाकर अगस्त के आंकड़े ये बताते हैं कि निवेशकों का रुझान इक्विटी, SIP और सोने जैसे विकल्पों की ओर मजबूत बना हुआ है। पुनीत, जिस तरह के आंकड़े हम देख रहे, अभी थोड़ी देर पहले भी इस पर हमने बात की थी, अगर देख रहे एक महीने के अंदर 19% की बढ़ोतरी बहुत कुछ कहती है।
0: देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा नहीं है, क्योंकि पिछले महीने के जो आंकड़े थे उसमें थोड़ी गिरावट हमने देखी
1: जी।
0: तो जून से जुलाई में थोड़ी गिरावट आई थी और अगस्त के महीने में वो जो लॉस हुआ था वो हमने एक तरह रिकवर किया है इनफ्लोज में। कुल मिलाकर जो म्यूचुअल फंड के जो फ्लोज हैं वो मेंटेन हो रहे हैं, और यही सबसे बड़ी बात है भारतीय बाजारों के लिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना कॉन्फिडेंस नहीं खो रहे हैं, वो लगातार म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आज भारत में करीब करीब 80 लाख करोड़ रुपया टोटल हम मैनेज, जो AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हम कहते हैं, वो करीब 80 लाख करोड़ रुपए की AUM है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करीब करीब 40 लाख करोड़ रुपया अभी मैनेज कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर है अब ये पूरे अर्थव्यवस्था के लिए। और जो इसमें भी जो खास बात है, आपने जो बात बताई कि 32,000 करोड़ रुपया SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी जो हर महीने निवेशक एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड स्तर पर है वो, तो ये मुझे एक बहुत पॉजिटिव एक खबर लगती है इसमें, और आई होप कि दिस कंटिन्यूज। इसमें यही हमारा स्ट्रेंथ रही।
1: इसमें एक चीज ये भी आई है सामने निकल करके कि इक्विटी फंड की श्रेणियों में स्मॉल कैप फंड जो है वो निवेशकों की पहली पसंद रहे, जिनमें लगभग 8,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। इसके बाद मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड आते हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं?
0: देखिए, बहुत एक अलग चीज है, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो कन्वेंशनल विजडम है वो ये है कि ज्यादातर पैसा लार्ज कैप्स में जाता है या इंडेक्स फंड में जाता है, और स्मॉल कैप्स और मिड कैप जो कि ज्यादा खतरनाक है, जो ज्यादा खतरा जिसमें रहता है उसमें ज्यादा रिस्की है, वहां पर कम निवेश होता है। पर जैसा हमने अभी आप और हम बात कर रहे थे पहले कि जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स हैं वहां पर निवेशकों ने ज्यादा पैसा डाला है पिछले दिनों, वहां पर ज्यादा अट्रैक्टिव उनको लगता है, तो वो एक ट्रेंड देख रहे हैं। पर ये देखिए, लॉन्ग टर्म ऐसा रहता नहीं है, लॉन्ग टर्म में तो लार्ज कैप्स और जो फ्लेक्सी कैप्स जो फंड्स हैं वो ज्यादा नेचुरली है।
1: इसमें एक और दिलचस्प बात सामने आई कि गोल्ड ETF में भी निवेश बढ़ा है, 66.6% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई।
0: देखिए, गोल्ड की चमक तो बनी हुई है भारतीय निवेशकों के लिए, इसमें कोई शक नहीं है।
2: वेल, गोल्ड प्राइसेस इंटरनेशनली एज अराउंड $4,400 पर ट्रॉय औंस व्हेन इट हैड टच्ड 4000, येट देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ इंटरेस्ट इन ETF regarding gold, but debt funds, there is an outflow in it, an inflow in ETF gold. Why is that the case? Because there is so much money now also going into treasuries, for instance, we mentioned about that earlier. Why is it that debt funds are seeing an outflow?
0: So debt funds usually see a very volatile flow, because depending on the money, because mostly debt funds come from corporates. So whenever they have surplus cash lying in the banks, for short term they put money into debt funds. Of course, in the month of September we have advanced tax payments made out. So I believe that a lot of liquidity would have gone to advanced tax payments, and therefore the flows in debt funds were lower.
2: In more news, RBI Governor Sanjay Malhotra said that fintech companies should treat customer data as a fiduciary responsibility rather than as a business asset. The RBI Governor stressed that fintech companies must act as partners in responsible financial innovation and handle customer

0: बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.1% गिरकर 1,53,287 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, जबकि चांदी 0.7% घटकर 2,33,642 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। पुनीत, गोल्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि खासतौर पर ऐसे स्थिति जब हम देख रहे हैं कि ETF में निवेश लोगों का बढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि गोल्ड खरीदने के बजाय लोग निवेश करने में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं? अब
1: देखिए, निवेश तो गोल्ड में कर ही रहे हैं, लेकिन यदि इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ते हैं यहाँ से, तो आप देखेंगे कि गोल्ड पर प्रेशर आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से गोल्ड में के ऊपर सेलिंग प्रेशर आता है। तो मैं अपने जो नज़र है वो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर रखूंगा। आने वाला सप्ताह उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और एनी मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट इंटरेस्ट रेट्स विल पुट डाउनवर्ड प्रेशर ऑन गोल्ड। तो गोल्ड एक नाजुक मोड़ पर अभी खड़ा हुआ है।
0: जी पुनीत जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद निखिल।
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise marginally. Sensex adds over 100 points. Nifty settles above 23,450. RBI Governor Sanjay Malhotra says fintech companies should treat customer data as a fiduciary responsibility rather than as a business asset. And global crude oil prices surge around 4%. Brent crude trades above $100 a barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाने रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज Space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति जिनफिंग 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वैश्विक अस्थिरता, पश्चिम एशिया में संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यह यात्रा ब्रिक्स सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस के सुरक्षा प्रभाग के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने कहा कि आने वाले विशिष्ट अतिथियों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम लोगों को कम से कम असुविधा हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है।
2: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफ़ी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट्स किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रह

0: संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि इस शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रसिद्ध समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आगा खान विकास नेटवर्क के समाजसेवी कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये इस बात का उदाहरण है कि सरकार के साथ मिलकर काम करने वाले गैर लाभकारी संगठन लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पानी और साफ सफाई, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों, शिक्षा और सामुदायिक विकास में आगा खान विकास नेटवर्क के योगदान पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। चीन के पूर्वी बंदरगाह शहर चिंगदाओ में एक मरम्मत के लिए खड़े विदेशी ध्वज वाले मालवाहक जहाज में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई। सरकारी प्रसारक सीसीटीवी के अनुसार लाइबेरिया के ध्वज वाले बल्क कैरियर ओशन मेलोडी में आज सुबह आग लगी। और खेलों में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज रात 8 बजे दुबई में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the International Space Summit at Paris in France today.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: Highlighting the remarkable growth of country's space journey, Mr. Modi said India aims to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. Prime Minister Modi said the country's guiding principle is clear, their benefits must reach all humanity. Lauding the role of ISRO in space journey, Mr. Modi said ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. New Delhi is gearing up to host the 18th BRICS summit this weekend with heightened security, infrastructure upgrades and extensive preparations across the national capital. The two-day summit, beginning at Bharat Mandapam on Saturday, brings together the world's major emerging economies. India is the current chair of the influential grouping. Top leaders of the grouping include Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin will be attending the BRICS summit. Chinese Foreign Ministry today said President Xi will be arriving in India this week to take part in the summit at the invitation of Prime Minister Narendra Modi. The visit comes amid a volatile global situation, ongoing conflict in West Asia and the Russia-Ukraine war. This will be Xi's first visit to India in nearly 7 years. Earlier this week, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal in a media briefing said Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with numerous leaders on sidelines of the BRICS summit. Delhi Police has made elaborate arrangements in view of the BRICS summit. Giving details about the security arrangements, Special Commissioner of Police, Protective Security Division, Manish Kumar Agrawal said that arrangements have been planned to ensure maximum security for visiting dignitaries while causing minimum inconvenience to the public. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi met eminent philanthropist Prince Rahim Aga Khan V in New Delhi today. During the meeting at Rashtrapati Bhavan, President

0: எஃப்எம் கோல்ட் அலைவரிசையில் சில நொடிகளில் தொடர்வது டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों में अधिक संस्थाएं और देश शामिल हो रहे हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे It saves life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति चिनफिंग 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वैश्विक अस्थिरता, पश्चिम एशिया में संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये यात्रा ब्रिक्स सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस के सुरक्षा प्रभाग के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने कहा कि आने वाले विशिष्ट अतिथियों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ आम लोगों को कम से कम असुविधा हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है।
3: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके, ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफ़ी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं, और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रसिद्ध समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खां पंचम से मुलाकात की। श्रीमती मुर्मू ने आगे आगा खान विकास नेटवर्क के समाज सेवी कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये उदाहरण है कि सरकार के साथ मिलकर काम करने वाले गैर लाभकारी संगठन लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी प्रिंस रहीम आगा खान

0: पंचम से मुलाकात की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में स्टार्टअप, वैज्ञानिक उद्योग, उद्यमी और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारक एक मंच पर आएंगे। चीन के पूर्वी बंदरगाह शहर चिंगदाओ में एक मरम्मत के लिए खड़े विदेशी ध्वज वाले मालवाहक जहाज में आग लगने से 20 लोगों की मौत की खबर है। सरकारी प्रसारक के अनुसार लाइबेरिया के ध्वज वाले बल्क कैरियर ओशन मेलोडी में आज सुबह आग लगी। दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत के साथ मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई है और भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। 12 सितंबर को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। New Delhi is geared up to host the 18th BRICS Summit this weekend with heightened security, infrastructure upgrades and extensive preparations across the national capital. The two-day summit beginning at Bharat Mandapam on Saturday brings together the world's 11 major emerging and developing economies. Top leaders of the grouping, including Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin, will be attending the BRICS Summit. The visit is expected to be a high-profile diplomatic engagement for BRICS cooperation amid a volatile global situation, ongoing conflict in West Asia and the Russia-Ukraine war. This will be Xi's first visit to India in nearly 7 years. The Delhi police has made elaborate arrangements in view of the BRICS summit. Giving details about the security arrangements, Special Commissioner of Police, Protective Security Division, Manish Kumar Agarwal said that arrangements have been planned to ensure maximum security for visiting dignitaries while causing minimum inconvenience to the public. He informed that around 15,000 Delhi police personnel and 200 companies of paramilitary forces have been deployed in the national capital for the security arrangements. Specialized surveillance cameras have also been deployed along routes to be used by visiting dignitaries. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the International Space Summit at Paris in France today.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: Highlighting the remarkable growth of country's space journey, Mr. Modi said, India aims to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. Prime Minister Modi said, the country's guiding principle is clear, their benefits must reach all humanity. Lauding the role of ISRO in space journey, Mr. Modi said ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi met eminent philanthropist Prince Rahim Aga Khan V in New Delhi today. During the meeting at Rashtrapati Bhavan, President Murmu appreciated the work undertaken by the Aga Khan Development Network. She said it demonstrates how non-profit organizations working in partnership with the government can improve people's quality of life. The government has amended the Consumer Protection E-Commerce Rules 2020 to tighten norms on price transparency, sponsored listing,

0: बैर को पहुंच रहे हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन और भारतीय ऑपरेटरों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ाया। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेरफेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज इनफाइनाइट, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव। एज ऑर्बिट्स बिकम मोर क्राउडेड, टेक्नोलॉजीज मोर पावरफुल एंड एक्टर्स मोर न्यूमरस।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुम्बकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने देश

0: की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट सिद्धांत है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ संपूर्ण मानवता तक पहुंचने चाहिए।
1: चंद्रयान 3 मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल। आदित्य L1 इज अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द सन। लास्ट ईयर एन इंडियन विजिटेड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लुकिंग अहेड वी एम टू एस्टैब्लिश एन इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड सेंड एन इंडियन टू द मून बाय 2040। इन ऑल दिस एफर्ट्स आवर गाइडिंग प्रिंसिपल हैज बीन क्लियर दैट बेनिफिट्स मस्ट रीच ऑल ह्यूमैनिटी।
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफ्रॉन स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध भी शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेकमी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत इस शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के महत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का संदेश देंगे। उनका कहना है कि इन संस्थाओं में आज की वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं।
2: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेशी मेहमानों के अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।
3: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
2: भारत की अध्यक्षता 4 प्रमुख स्तंभों लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित

0: आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। प्रस्तावित समझौतों में पिनकल एयर, एयर केरल और स्लीक एविएशन सहित भारतीय विमानन कंपनियों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति और इससे जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। दो दिन का इनोप्रोम इंडिया कार्यक्रम कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक रूस और भारत की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities

0: Marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है और अब किसी के हताहत ना होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार 3 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दे रही है, जोखिम में कमी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और किसी के हताहत ना होने देना। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आपदा रोधी गांव और शहर तैयार करना है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। नए नियमों से ई कॉमर्स क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, मिली शाह की टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। उधर दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। 0 हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए शुष्क क्षेत्रों में कृषि की नई संभावनाओं और जलवायु अनुकूल समाधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICARIARI में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RS बाना और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक RS बाना जी। RS बाना जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: बाना जी। सबसे पहले एक बेसिक सा प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि शुष्क भूमि क्या है, इस पर किस तरह की खेती होती है और इसमें चुनौतियां किस तरह की हैं?
2: अगर हमारे देश के हम कुल कृषि रकबे की बात करें तो उसमें 45% के आसपास ऐसा क्षेत्र है जहां पर सिंचाई के साधन या तो उपलब्ध है ही नहीं और है भी तो बहुत सीमित। और जो सिंचित क्षेत्र है बाकी का 55%, उसमें भी काफी बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां पर सिंचाई के साधन सीमित है। और जो कम बरसात वाला ऐसा क्षेत्र है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, तो ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर बरसात कम होती है। अमूमन 750 मिलीमीटर से कम बरसात वाले क्षेत्रों को अर्धशुष्क क्षेत्र और जो 250 मिलीमीटर से कम वाले हाइपर एरिड क्षेत्र उनको बोलते हैं, यानी कि बहुत ही शुष्क क्षेत्र। तो जो ये शुष्क क्षेत्र है उनमें चुनौतियों की अगर हम बात करें तो पानी की उपलब्धता नहीं है, वो तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। उत्पादन स्तर काफी कम रहता है फसलों का, गरीबी बहुत बड़ी एक समस्या है, तो कई तरह की सामाजिक आर्थिक विषम परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से, क्योंकि ये जितना भी हमारा जो ड्राईलैंड क्षेत्र की हम बात करते हैं, करीब करीब 40% आबादी इसमें रहती है
1: जी।
2: और जो पशुधन है, हमारे देश का आधे से अधिक पशुधन इस क्षेत्र में है, तो चारे की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, अनाज की उपलब्धता, माइग्रेशन, रोजगार के अवसर के लिए, कमाने के लिए दूसरे क्षेत्रों में यहां के लोगों को जाना पड़ता है, तो ये इस तरह की जो समस्याएं हैं वो है। इसके अलावा जलवायु संबंधित, मृदा संबंधित समस्याएं हैं, मृदा की उर्वरा शक्ति कम है, जैविक कार्बन कम है, और चूंकि पशुधन है तो जितनी भी वनस्पति होती है उनको पेट भरने के लिए खिलाना जरूरी है। और जलवायु संबंधित चुनौतियों की अगर हम बात करें तो कभी तो बरसात आती नहीं, आती है तो बहुत कम आती है, कई बार बरसात के बीच में काफी सारा अंतराल आ जाता है, उस दौरान फसलें खराब हो जाती है चूंकि पानी की कमी है।
1: तो वैसे मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो शुष्क भूमि है और जो आर्द्र भूमि है, इनमें खेती में क्या अंतर होता है?
2: शुष्क भूमि में जो ऐसी फसलें होती है मैं मुख्यतः जिसमें बहुत कम पानी में ही वो पैदा हो सकती है, और जो हमारे शुष्क क्षेत्र हैं उनकी अगर हम फसलों की बात करें तो मिलेट्स एक बहुत बड़ा समूह है जो बारानी क्षेत्रों में होता है, यानी कि जो जैसे कि बाजरा है, ज्वार है,
1: और मोटा अनाज,
2: जी मोटा अनाज वाली फसलें जिनको श्री अन्न भी बोलते हैं, और मिलेट्स के अलावा दलहनी फसलें, तिलहनी फसलों का भी काफी बड़ा क्षेत्र, यानी कि करीब करीब दलहनों की बात करें तो 85-90% के आसपास दलहन भी बारहनी क्षेत्रों में होती है, और तिलहनी जो फसलें हैं वो भी करीब करीब 80% के आसपास इन क्षेत्रों में ही होती है। तो ये इस प्रकार की फसलें होती है, जबकि आर्द्र क्षेत्र ऐसे हैं जो धान वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर जल भरा होता है, ज्यादा बरसात होती है, तो वहाँ की समस्याएं अलग प्रकार की होती है।
1: आज के समय में अगर हम बात करें तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश की जाए, तो ऐसे में जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जब हम देखते हैं कि किसानों को जलवायु परिवर्तन से निपट के लिए भी सरकार सहायता प्रदान कर रही है और शुष्क क्षेत्रों में ये पहल कुछ ज्यादा हो रही है,
2: सरकार लगातार प्रयासरत है कि किसानों की आमदनी बढ़े, किसानों का जीवन स्तर उच्च हो, उसमें कोई संदेह नहीं है, और सरकार और जो सरकारी संस्थान है उसमें वो लगे हुए हैं। और जो जलवायु है उसमें जो परिवर्तन आ रहा है वो शुष्क क्षेत्रों में ज्यादा होने की प्रबल संभावनाएं हैं, परंतु जैसे जैसे ये वैज्ञानिक विकास हो रहा है, अगर हम आज के एक या दो दशक पहले की हम बात करें तो यदि 10% बरसात में कमी आती थी, मानसून 10% कमजोर रहता था, तो करीब करीब 13-13.5% से भी ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन कम हो जाता था। अब उसी 10% में 0.22% तक ही कमी आती है, हमारा खाद्यान्न उत्पादन इस तरह हम बना के रखते हैं क्योंकि जो वैज्ञानिक विकास हुआ

0: है और जो सरकार के प्रयास है और हमारे जो किसानों की मेहनत है उससे हम जलवायु परिवर्तन को काफी हद तक मात दे पाए हैं। परंतु यदि दीर्घ काल की बात करें तो हमें जलवायु सहनशील किस्मों, जलवायु से संबंधित जो रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं उनको उत्पादन करके सरकार, विज्ञान, वैज्ञानिक और किसानों को मिलकर काम करना होगा ताकि हम निरंतर आगे बढ़ सके।
1: डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, फसल विविधीकरण करना, अंतर फसल करना और कृषि वनीकरण जैसी जो प्रणालियां होती हैं, ये शुष्क भूमि में कितनी लाभदायक हो सकती हैं?
0: जो बारानी क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, उनमें फसल की फेल होने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे आपने पूर्व में कहा फसल विविधीकरण और ये जो अंतर फसलीकरण है यानी कि जो इंटरक्रॉपिंग है, एक ही साथ दो से अधिक प्रकार की फसलें लगाएं, बागवानी, एग्रोफोरेस्ट्री या फसलों को अदल बदल कर बोना, बहुत सारी फसलें एक साथ खेतों में लगाना, उसका फायदा यह है कि यदि एक फसल फेल हो जाती है तो दूसरी फसल एक तरह से इंश्योरेंस होती है। यही इंटरक्रॉपिंग का सबसे बड़ा फायदा है। इसी तरह से जो हमारा शुष्क क्षेत्र है वहां पर पशुधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है और वो एक बारानी क्षेत्रों की जीवन रेखा है, जीवन की आधारशिला है। तो जो एग्रोफोरेस्ट्री है वो पशुधन के लिए एक चारे का वैकल्पिक स्रोत तैयार करती है, वर्ष भर किसानों की आमदनी होती रहे इसके लिए जरूरी है कि बागवानी, एग्रोफोरेस्ट्री, अंतर फसलीकरण का समावेश हमारी फसल प्रणालियों में हो और फसल विविधीकरण को हम बड़े पैमाने पर अपनाएं।
1: डॉक्टर बाना, अभी ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 का आयोजन किया जा रहा है जिसमें साउथ साउथ कोऑपरेशन को विशेष तौर पे महत्व दिया जा रहा है, तो भारत का ये जो सहयोग की भावना है भारत की, इसके माध्यम से शुष्क भूमि की खेती के क्षेत्र में भारत के साथ साथ दूसरे देशों को भी कैसे महत्व दिया जा रहा है, खासतौर पर जब हम अनुभव की बात करते हैं, तकनीक साझा करने की बात करते हैं, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें।
0: जी, भारत सरकार का जो ICAR है, कृषि मंत्रालय का, और ICRISET जो एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है हैदराबाद, ये दोनों मिलकर जो ड्राईलैंड कॉन्फ्रेंस 10, 11, 12 सितंबर 2026 का आयोजन कर रहे हैं, उसमें दुनिया भर के विश्व स्तर के जो वैज्ञानिक गण हैं, किसान हैं जो बारानी खेती से संबंधित, वो सब एकत्रित हुए हैं और राजनीतिक नेतृत्व भी वहां पे आया है। माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आज वहां पर आके और एक अपना विजनरी टॉक दी है। तो ये क्योंकि भारत अब दुनिया में एक राह दिखाने वाला उस पे चल रहा है और हम जो विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, हमें बारानी क्षेत्रों को, ड्राईलैंड्स को विकसित करना है और जो ग्लोबल साउथ की जो हम बात करते हैं, यानी कि दुनिया का वो दक्षिणी हिस्सा जो जिसमें लैटिन अमेरिका भी है, अफ्रीका है, एशिया पैसिफिक के जो देश हैं जो विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से, उनमें भारत एक लीडर की भूमिका में है। और ये जो ड्राईलैंड से संबंधित अनुसंधान है भारत में, ICAR में, IARI जो पूसा संस्थान है उसमें, और ICAR के इंस्टीट्यूट है जैसे कि काजरी है जोधपुर में, क्रीडा है हैदराबाद में, ये जो तकनीकियों का विकास किया है वो दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है। और जो दुनिया भर के संस्थान है, वैज्ञानिक है जो आज एकत्रित हुए हैं, वो सब उन पे मंथन करेंगे और ICRISET का और ICAR का ये 50 साल का सहयोग हुआ है उसको भी एक मनाया जा रहा है 2026 में, तो उस पे मंथन होगा, क्या क्या तकनीकियां हो सकती है जो भविष्य में जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य में हमारे किसानों की आजीविका और आय बढ़ाती रहे और जो ये फसल प्रणालियां हैं बारानी क्षेत्रों की, शुष्क क्षेत्रों की, उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, सतत विकास कैसे हो, उस पे मंथन होगा।
1: डॉक्टर साहब, ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस जो हो रही है इसमें शोध, उद्योग, स्टार्टअप, सरकार और किसान संगठनों को एक साथ लाने पर जोर दिया गया है, तो आपको लगता है कि सभी पक्षों के बीच में जब सहयोग बेहतर होगा तो फिर शुष्क भूमि के किसानों की आय बढ़ेगी और खेती की संभावनाएं जो कम होती हैं उनमें भी बढ़ोतरी होगी?
0: बिल्कुल, इसमें हमें साथ मिलकर काम करना होगा। और जो थीम है ड्राईलैंड कांग्रेस की, साउथ साउथ कोऑपरेशन, मतलब दुनिया भर के जो ग्लोबल साउथ के देश हैं यदि साथ मिलकर काम करते हैं तो वो एक बड़ी दीर्घकालिक सोच होगी। और साथ ही जो ये हमारे अलग अलग पार्टनर हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, अनुसंधान करने वाले, पॉलिसी बनाने वाले, स्टार्टअप्स, एंटरप्राइजेज, यूथ, महिलाएं, ये सब अगर मिलकर आगे बढ़ते हैं, और ड्राईलैंड कॉन्फ्रेंस का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जो जलवायु परिवर्तन के दौर में किस तरह से खेती को सतत उत्पादन मिलता रहे, शुष्क क्षेत्रों में किसानों की आय निरंतर बढ़ती रहे, और जो जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कई बार नुकसान हो जाता है, बहुत तगड़ा ड्राउट, सूखा आ जाता है, उससे माइग्रेशन बढ़ जाता है, उन सबको रोकने के लिए हम सबको मिलकर, हाथ से हाथ मिलाकर

0: कंधे से कंधे मिलाकर काम करना होगा।
1: डॉक्टर बाना, कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसानों को किस तरह की फसलों को अपनाना चाहिए, कैसी पद्धति अपनी रखनी चाहिए?
0: हमारे जो ड्राईलैंड्स है उनकी अलग ही प्रकार की फसलें भी होती है। कुछ ऐसी फसलें होती है जो दूसरी जगह पे उतनी नहीं होती। बीजीए मसाले होते हैं जिसमें कि जीरा है, सौंफ है, धनिया है, मेथी है, नागोरी पान मेथी है, तो ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल वाली फसलें हैं। यदि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करें तो यूरोपीय बाजार या अमेरिकी बाजार में इसका बहुत बड़ा स्कोप है। और कुछ किसान और जो आजकल युवा उद्यमी विशेषकर एफपीओ का निर्माण करके और अपनी आमदनी में वृद्धि कर रहे हैं, और भारत में भी जो किसानों की आयु बढ़ रही है, युवा कम आकर्षित हो रहा है, तो ये जो इस तरह की एक्सपोर्ट पोटेंशियल वाली फसलें हैं और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, उसके जरिए हम युवाओं को खेती की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और जो बरानी क्षेत्रों की फसलें हैं उनमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है अगर युवा इसमें आगे आते हैं और एक्सपोर्ट हब बना के, और इसमें न केवल युवाओं का बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्र है बरानी क्षेत्रों के, उनके किसानों की आय बढ़ेगी।
1: डॉक्टर साहब, किसानों के हित की जब बात कर रहे हैं तो कोई किसान यदि मदद लेना चाहे तो ICAR की बात हो, पूसा संस्थान हो, और ICRA SAT हो, जिनकी साझेदारी के 50 वर्ष अब पूरे हो रहे हैं, कैसे उनकी मदद ले सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं शुष्क भूमि में अपनी खेती को बढ़ाने के लिए?
0: ICRA SAT जो कि दुनिया भर में सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में काम कर रहा है, और ICAR का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का जिसकी पहुंच, जहां बोलते हैं ना रेयरेस्ट ऑफ जो जगह है, सुदूर क्षेत्र है, पहाड़ अरुणाचल के दिरांग से लेके अंडमान के पोर्ट ब्लेयर तक, और सब जगह देश भर में हर जगह ICAR के संस्थान मौजूद है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र मौजूद है जो किसानों के साथ निरंतर काम कर रहे हैं। उनकी सिर्फ समस्याएं सुनी नहीं जाती, उनको लैब तक लाया जाता है और लैब में उनका समाधान खोजा जाता है, और वापस लैब से लैंड को वो ट्रांसफर होती है। और अब तो जो हमारी सरकार है वो निरंतर प्रयास रहता है, भले ही वो विकसित कृषि संकल्प अभियान हो या जो किसानों के साथ जुड़कर बैलेंस फर्टिलाइजेशन का जो अभियान चलाया है अभी इस वर्ष, तो उसके थ्रू हम जो ग्रामीणों तक पहुंच रहे हैं, युवाओं तक पहुंच रहे हैं, महिलाओं तक पहुंच रहे हैं, और ICAR का और जो ICRA SAT का जो 50 वर्ष की जो ये गोल्डन जुबली है उसमें जो युवा और महिला किसान है उनको सम्मान मिल सके, उस पर बड़ा एक फोकस है।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने युवा और महिला किसानों की बात की, थोड़ा सा छोटे और सीमांत किसानों की अगर हम बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन का असर भी उन पर जाहिर सी बात है पड़ता ही है, तो महंगी तकनीक भी है और जानकारी की कमी की भी बात कह सकते हैं हम, संसाधनों की कमी है, तो ये सारी जो बातें हैं इन पर अगर थोड़ा सा हम फोकस करें तो कैसे इनसे निपटा जा सकता है?
0: छोटे किसानों के लिए हमारे संस्थान है या हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ICAR और IARI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, निरंतर प्रयासरत है छोटी मशीनरी, किसानों के लिए कम लागत वाली तकनीकियां, संरक्षण कृषि जिसको कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कहते हैं, जीरो टिलेज या नो टिल फार्मिंग भी बोला जाता है, जिसमें बिना जुताई किए ही खेती करें, फसल अवशेषों को जलाएं नहीं, उनको खेतों में ही उपयोग करें ताकि मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़े और जो जलवायु को प्रदूषण होता है उसका नुकसान होता है उन सबको बचा जाए। तो स्मॉल स्केल मशीनरी, कम लागत वाली जो सस्य तकनीकियां हैं उनका विकास हम निरंतर कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारा देश तो छोटे किसानों का देश ही कह सकते हैं, तो उनके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और जुड़ के और खेतों में काम कर रहे हैं हमारे किसान वैज्ञानिक मिलकर साथ में, और जो तकनीकी का विकास हो रहा है उसी का परिणाम है कि आज हम दुनिया में धान उत्पादन में एक नंबर पर पहुंच चुके हैं, हम फूड सिक्योरिटी में सेल्फ सफिशिएंट है, आज हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं यानी कि जो हमारे अनाज होते हैं उनमें ज्यादा सांद्रता में पोषक तत्व हो उसकी बात कर रहे हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, और डिजिटल एग्रीकल्चर और जो एक मौसम सेवा है जिसमें किसान मौसम आधारित तकनीकियों से जुड़ा है, निरंतर हम प्रयासरत हैं कि हमारी तकनीकी उन तक पहुंचे, जिसमें हमारे जो सोशल मीडिया सहित जो पुराने प्लेटफॉर्म भी थे उन सब का उपयोग करते हुए हम किसानों से सीधा जुड़े हुए हैं।
1: डॉक्टर बाना, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे शुष्क क्षेत्रों में कृषि की नई संभावनाओं और जलवायु अनुकूल समाधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR IARI में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RS बाना और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर

0: पक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रहे हैं। ऐसे में टकराव की बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ की बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव की बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज इनफाइनाइट, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव। एज ऑर्बिट्स बिकम मोर क्राउडेड, टेक्नोलॉजीज मोर पावरफुल एंड एक्टर्स मोर न्यूमरस।
0: भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। शनिवार से शुरू हो रहे दो दिन के शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दे फतेह अल सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कल से 11 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान आम जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलीखनोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है और किसी के हताहत न होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार तीन प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दे रही है, जोखिम में कमी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और किसी के हताहत ना होने देना। भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोंग में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, मिलीशा की टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग S1 स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 150 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में बांग्लादेश ने ताजा समाचार मिलने तक चौथे ओवर में बिना कोई विकेट खोए 20 रन बना लिए थे। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 149 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing

0: में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल पहुंचने की संभावना। भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन और भारतीय ऑपरेटरों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ाया। यमन के लाल सागर तट के पास हूती विद्रोहियों की मौजूदगी के कारण बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य में खतरा बढ़ा। और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज इनफाइनाइट, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव। एज ऑर्बिट्स बिकम मोर क्राउडेड, टेक्नोलॉजीज मोर पावरफुल एंड एक्टर्स मोर न्यूमरस।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की जरूरत है।
1: इंडियाज अप्रोच इज रूटेड इन वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। दिस स्पिरिट मस्ट नाउ ट्रेवल बियॉन्ड अर्थ। वी सपोर्ट अ सेफ, सिक्योर, पीसफुल एंड सस्टेनेबल स्पेस डोमेन एंकर्ड इन इंटरनेशनल लॉ, डायलॉग एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। साइंटिफिक डेटा मस्ट सर्व द कॉमन गुड विद ओपननेस एंड इंटीग्रिटी। इंडिया स्पेस जर्नी रिफ्लेक्ट दिस फिलोसॉफी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट सिद्धांत है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ पूरी मानवता तक पहुंचने चाहिए।
1: चंद्रयान 3 मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल। आदित्य L1 इज अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द सन। लास्ट ईयर एन इंडियन विजिटेड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लुकिंग अहेड वी एम टू एस्टैब्लिश एन इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड सेंड एन इंडियन टू द मून बाय 2040। इन ऑल दिस एफर्ट्स आवर गाइडिंग प्रिंसिपल हैज बीन क्लियर, दैट बेनिफिट्स मस्ट रीच ऑल ह्यूमैनिटी।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उत्कृष्ट और कम लागत वाले अभियानों के कारण इसरो ने दुनिया भर में सम्मान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि इसरो की क्षमताओं का लाभ किसानों और मछुआरों को मिल रहा है। भारत इस शनिवार से नई दिल्ली में भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम ब्रिक्स के साझेदार देशों के रूप में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो,

0: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद अल जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। इसके बाद मजबूती, नवाचार, सहयोग और सतत विकास समावेशी वैश्विक विकास के लिए भविष्य का निर्माण विषय पर सत्र होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं।
1: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेशी मेहमानों के अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।
2: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
1: भारत की अध्यक्षता चार प्रमुख स्तंभों लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बो प्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच यमन की स्थिति गंभीर होती जा रही है। खबरों के अनुसार हुती लड़ाकों ने यमन के रणनीतिक बंदरगाह शहर मोचा पर कब्जा कर लिया है और वे बाब अल मंदेब जल डबरू मध्य के करीब पहुंच रहे हैं। यह घटनाक्रम हुती और यमन के सरकारी बलों के बीच फिर से शुरू हुई लड़ाई के दौरान सामने आया है। इससे वैश्विक समुद्री परिवहन और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 150 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में बांग्लादेश ने ताजा समाचार मिलने तक 8वें ओवर में 2 विकेट पर 35 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने को तैयार है। यमन में लाल सागर तट के पास हुती विद्रोहियों की मौजूदगी के कारण बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य में खतरा बढ़ा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेणुका विद द वर्ल्ड न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says India supports a safe and sustainable space domain. Virtually addresses first International Space Summit in Paris. न्यू दिल्ली गया

0: The time now is 11 p.m. and coming up is the news in Hindi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे It saves life on earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective as orbits become more

0: crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
1: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इनमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेक मी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2 दिन के सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और भारत सहित 11 सदस्य देश शामिल होंगे। ब्रिक्स के साझेदार देशों के रूप में बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम भी सम्मेलन में भाग लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस और ब्राजील के राष्ट्रपति आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे, जबकि कई अन्य नेता कल राजधानी पहुंचेंगे। शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने विषय पर चर्चा के साथ होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में कल दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। यात्रियों को ताजा जानकारी के लिए DMRC की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन 3 विषयों की दोबारा परीक्षा प्रश्न पत्रों में कई गलतियों की शिकायतों के बाद आयोजित की गई थी। अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा आज हुई। क्रिकेट में दुबई में खेले जा रहे महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 150 रन का लक्ष्य रखा है। इससे पहले बांग्लादेश की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France today.
0: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
2: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey.
0: Chandrayaan-3 made India the first nation to land near the

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल।
1: और सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार।
0: Benchmark domestic stock market indices rise marginally. Sensex adds over 100 points. Nifty settles above 23,450. RBI Governor Sanjay Malhotra says fintech companies should treat customer data as a fiduciary responsibility rather than as a business asset. And global crude oil prices surge.

0: It's around 4%. Brent crude trades above $100 a barrel.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त सेंसेक्स में 100 से अधिक अंकों की तेजी निफ्टी 23,450 के ऊपर बंद हुआ भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने फिनटेक कंपनियों से कहा कि उन्हें कस्टमर डेटा को एक व्यावसायिक संपत्ति के स्थान पर अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में करीब 4% का उछाल ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर
0: And before we take our main stories in detail, here is a very important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 0.2% की बढ़ोतरी हुई जिससे लगातार 3 दिन की गिरावट का सिलसिला थम गया सेंसेक्स 138 अंक बढ़कर 74,903 पर बंद हुआ निफ्टी 46 अंक ऊपर आकर 23,478 पर पहुंच गया हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक 0.4% नीचे आया और स्मॉल कैप सूचकांक 0.1% गिर गया इससे पहले बाजार आज सपाट स्तर पर खुले और पूरे सत्र के दौरान उतार चढ़ाव का दौर चलता रहा हालांकि क्लोजिंग ऑक्शन सत्र के दौरान सूचकांक गिरावट से ऊपर कर बढ़त की स्थिति में देखे गए
0: Benchmark domestic equity indices ended 0.2% higher today, snapping a three-day losing streak. Sensex gained 138 points to close at 74,903. Nifty added 46 points to settle at 23,478. However, in the broader market on the NSE, the mid-cap 100 index declined by 0.4% and the small-cap 100 index dipped by 0.1%. Earlier, the markets opened on a flat note and oscillated between gains and losses throughout the session. However, during the closing auction session, the indices rebounded from the red into positive territory.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 15 कंपनियों के शेयरों में आज बढ़त दर्ज की गई सबसे ज्यादा उछाल वाली कंपनियों में पावर ग्रिड 2.3% एक्सिस बैंक 1.6% और अल्ट्राटेक सीमेंट 1.4% ऊपर चढ़े वहीं दूसरी तरफ एचसीएल टेक में 2.4% टाटा स्टील में 1.4% और ट्रेंट में 1.1% की गिरावट देखी गई
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 18 out of the 28 sectors edged downward. Among the top underperformers, capital goods lost 1%, telecommunications dropped 0.9% and metals fell by 0.7%. In contrast, insurance advanced at 0.6%, top 10 banks gained 0.5% and BankEx added 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 2,502 companies declined 1,826 companies advanced and 199 companies remain unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 34 पैसे गिरकर 95.45 रुपए पर बंद हुआ पुनित कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज देखा हमने कि शेयर बाजार में 3 दिनों की गिरावट का सिलसिला थमा और 0.2% की बढ़ोतरी हुई क्या ये मरहम का काम करेगा या और कोई स्थिति हम सामने देख पा रहे हैं या और जो वैश्विक परिस्थितियां हैं कैसा असर उसमें डालेंगी
2: तो निखिल हालांकि मैं कहना चाहूंगा कि महरम का अगर काम करे आज का बाजार की थोड़ी जो मामूली बढ़त थी पर ऐसा नहीं है बाजार आज काफी वोलेटाइल था ऊपर नीचे का दौर रहा बाजार में और जो हम बढ़त देख रहे हैं वो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में थोड़ा टेक्निकली बाजार ऊपर बंद हुआ लेकिन जो आपने आंकड़े पढ़े उसमें जो ब्रॉडर मार्केट की जो ब्रेथ की बात करी यानी ज्यादातर अगर आप देखें तो शेयर्स में गिरावट थी और बहुत कम शेयर्स में बढ़त थी तो कुल मिलाकर जो अंडरलाइंग ट्रेंड है अभी भी बाजारों में वो वीक है कमजोर है अभी बहुत बड़ा हम निवेश नहीं देख रहे हैं पर्टिकुलरली जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं दोबारा से उन्होंने काफी बड़े पैमाने पे सेलिंग शुरू कर दी है और उसका मुख्य कारण देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो फैक्टर्स हैं खासतौर से मैं कहूंगा जो कच्चे तेल की कीमतें हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो काफी बढ़ रही हैं और जब तक वो कंट्रोल में नहीं आएंगे और उसकी वजह से जो एक तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है दूसरा जो बॉन्ड यील्ड्स हैं यानी इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी ऊपर की तरफ बढ़त है तो कुल मिलाकर सारे फैक्टर्स बाजार पर दबाव डाल रहे हैं तो मुझे लगता है जो अंडरलाइन ट्रेंड है वो शॉर्ट टर्म में वीक ही रहेगा
1: लेकिन इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में जो गिरावट आई उसके लिए आप क्या कहेंगे
2: देखिए पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी बढ़त थी और वो आउट परफॉर्म कर रहे थे लार्ज कैप्स को इनफैक्ट

0: into India if they have the opportunities, and for that they need the global situation to stabilize.
1: Puneet, मैं आपका ध्यान थोड़ा सा IT sector की ओर ले जाना चाहूँगा कि इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए IT sector के प्रति, और खास तौर पे ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप की स्थिति अलग है, मिड कैप और स्मॉल कैप की स्थिति अलग है, तो कैसे एक रिलेशन बना सकते हैं तीनों में?
0: लेकिन देखिए, IT sector के की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में, वो काफी सिग्निफिकेंट रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स, इन टर्म्स ऑफ जो भारत का जो एक साख है पूरी वर्ल्ड में, वो IT सेक्टर से बनी है. पिछले दिनों हमने देखा कि IT सेक्टर में जो थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से थोड़ा वहां पर हमने कुछ कमी देखी है वहां पर कॉन्फिडेंस में, और हम देख रहे हैं कंपनियों के शेयर्स में भी गिरावट आई है, कुछ हद तक रेवेन्यूज में भी थोड़ा चैलेंज रहा है. तो एक कंसोलिडेशन का फेज है, थोड़ा सा मॉडरेशन का फेज है IT सेक्टर में. मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपका मेन मुख्य सवाल था कि इन्वेस्टर्स का क्या रुख रहना चाहिए IT सेक्टर के शेयर्स की तरफ, तो मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस भारत के IT सेक्टर में रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और मुझे आई थिंक वी शुड कंटिन्यू टू इन्वेस्ट ग्रेजुअली एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म पोजीशंस इन IT.
1: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं. भारतीय इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगस्त महीने के दौरान निवेशकों का भरोसा और बढ़ा है. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI के आंकड़ों के अनुसार अगस्त में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करीब 19% बढ़कर 29,329 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि जुलाई में यह 24,697 करोड़ रुपए था. वहीं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरिए निवेश ने भी नया रिकॉर्ड बनाया, और अगस्त में यह बढ़कर 32,297 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है. इक्विटी फंड की श्रेणियों में स्मॉल कैप फंड निवेशकों की पहली पसंद रहे, जिनमें करीब 8,000 करोड़ रुपए का निवेश आया. इसके बाद मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड का स्थान रहा. हालांकि लार्ज कैप और इक्विटी फंड सेविंग स्कीम यानी ELSS फंड से 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी दर्ज हुई. दूसरी ओर गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी गोल्ड ETF में निवेश भी 66.6% से ज्यादा बढ़ा, और इसमें लगातार तीसरे महीने निवेश सकारात्मक रहा. हालांकि डेट फंड में तस्वीर इसके उल्टी रही, जहां जुलाई में 1,87,000 करोड़ रुपए का भारी निवेश आया था, वहीं अगस्त में डेट फंड से 8,127 करोड़ रुपए की निकासी हुई है. कुल मिलाकर अगस्त के आंकड़े ये बताते हैं कि निवेशकों का रुझान इक्विटी, SIP और सोने जैसे विकल्पों की ओर मजबूत बना हुआ है. पुनीत, जिस तरह के आंकड़े हम देख रहे, अभी थोड़ी देर पहले भी इस पर हमने बात की थी, अगर देख रहे एक महीने के अंदर 19% की बढ़ोतरी बहुत कुछ कहती है.
0: देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा नहीं है, क्योंकि पिछले महीने के जो आंकड़े थे उसमें थोड़ी गिरावट हमने देखी
1: जी.
0: तो जून से जुलाई में थोड़ी गिरावट आई थी, और अगस्त के महीने में वो जो लॉस हुआ था वो हमने एक तरह रिकवर किया है इनफ्लोज में. कुल मिलाकर जो म्यूचुअल फंड के जो फ्लोज हैं वो मेंटेन हो रहे हैं, और यही सबसे बड़ी बात है भारतीय बाजारों के लिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना कॉन्फिडेंस नहीं खो रहे हैं, वो लगातार म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं. देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आज भारत में करीब करीब 80 लाख करोड़ रुपया टोटल हम मैनेज, जो AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हम कहते हैं, वो करीब 80 लाख करोड़ रुपए की AUM है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करीब करीब 40 लाख करोड़ रुपया अभी मैनेज कर रहे हैं. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर है अब ये पूरे अर्थव्यवस्था के लिए. और जो इसमें भी जो खास बात है, आपने जो बात बताई कि 32,000 करोड़ रुपया SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी जो हर महीने निवेशक एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड स्तर पर है वो. तो ये मुझे एक बहुत पॉजिटिव एक खबर लगती है इसमें, और आई होप कि दिस कंटिन्यूज, और यही हमारा स्ट्रेंथ रहेगी.
1: इसमें एक चीज ये भी आई है सामने निकल करके कि इक्विटी फंड की श्रेणियों में स्मॉल कैप फंड जो है वो निवेशकों की पहली पसंद रहे, जिनमें लगभग 8,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ. इसके बाद मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड आते हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं?
0: देखिए, बहुत एक अलग चीज है, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो कन्वेंशनल विजडम है वो ये है कि ज्यादातर पैसा लार्ज कैप्स में जाता है या इंडेक्स फंड में जाता है, और स्मॉल कैप्स और मिड कैप जो कि ज्यादा खतरनाक है, जो ज्यादा खतरा जिसमें रहता है उसमें ज्यादा रिस्की है, वहां पर कम निवेश होता है. पर जैसा हमने अभी आप और हम बात कर रहे थे पहले कि जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स हैं वहां पर निवेशकों ने ज्यादा पैसा डाला है पिछले दिनों, वहां पर ज्यादा अट्रैक्टिव उनको लगता है, तो वो एक ट्रेंड देख रहे हैं. पर ये देखिए, लॉन्ग टर्म ऐसा रहता नहीं है. लॉन्ग टर्म में तो लार्ज कैप्स और जो फ्लेक्सी कैप्स जो फंड्स हैं वो ज्यादा नेचुरली है.
1: इसमें एक और दिलचस्प बात सामने आई कि गोल्ड ETF में भी निवेश बढ़ा है, 66.6% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई.
0: देखिए, गोल्ड की चमक तो बनी हुई है भारतीय निवेशकों के लिए, इसमें कोई शक नहीं है.
2: वेल, गोल्ड प्राइसेस इंटरनेशनली एज

0: raised its interest rate by 25 basis points to 2.5%. Bank of Japan is at 1%. And this is again because of inflationary pressures. Energy constituting 14.3% rise as far as Europe is concerned.
1: Absolutely, Arjun. I think that's the elephant in the room really is the inflation. And inflation which has been caused by high energy prices. So central banks have limited choices. Let's see what they do.
0: In more news, global investment bank Jefferies has said that India's new industrial revolution is being driven by a large domestic market, rising private sector participation and sustained policy support. In a report published yesterday, it pointed to measures such as opening space to private players, tax holidays for data centers, incentive schemes for semiconductors, electronics and solar localization measures and government GPU purchases as key enablers of growth across emerging sectors.
2: भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.1% गिरकर 1,53,287 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, जबकि चांदी 0.7% घटकर 2,33,642 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। पुनीत, गोल्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि खासतौर पर ऐसे स्थिति में जब हम देख रहे हैं कि ETF में निवेश लोगों का बढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि गोल्ड खरीदने के बजाय लोग निवेश करने में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं? अब
1: देखिए, निवेश तो गोल्ड में कर ही रहे हैं, लेकिन यदि इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ते हैं यहां से, तो आप देखेंगे कि गोल्ड पर प्रेशर आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से गोल्ड में के ऊपर सेलिंग प्रेशर आता है। तो मैं अपने जो नजर है वो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर रखूंगा आने वाला सप्ताह, उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और एनी मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट इंटरेस्ट रेट्स विल पुट डाउनवर्ड प्रेशर ऑन गोल्ड। तो गोल्ड एक नाजुक मोड़ पर अभी खड़ा हुआ है।
2: जी पुनीत जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद निखिल।
0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise marginally. Sensex adds over 100 points. Nifty settles above 23,450. RBI Governor Sanjay Malhotra says fintech companies should treat customer data as a fiduciary responsibility rather than as a business asset. And global crude oil prices surge around 4%. Brent crude trades above $100 a barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: திரைகானம் கேட்டீர்கள். அடுத்த திரை இசை பாடல்கள் 12-10 மணிக்கு கேட்டு ரசிக்கலாம். தொடர்வது ஆங்கிலத்திலும் ஹிந்தியிலும் செய்தி அறிக்கை. டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே மொஹம்மது ஜுபேர். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
1: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इनमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। कल से शुरू हो रहे 2 दिन के इस शिखर

0: सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात यूएई सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड जनपद, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। यात्रियों को ताजा जानकारी के लिए DMRC की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखने की सलाह दी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आय, आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद मिलने वाली 60 दिन तक की राहत अवधि खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। मौजूदा नियम के तहत नौकरी जाने के बाद कर्मचारी को नया नियोक्ता तलाशने या इमिग्रेशन का दूसरा विकल्प अपनाने के लिए 60 दिन तक अमेरिका में रहने की अनुमति होती है। गृह सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलने पर ये सुविधा खत्म हो सकती है। क्रिकेट में दुबई में खेले जा रहे महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 150 रन का लक्ष्य रखा है। इससे पहले बांग्लादेश की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France yesterday.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey.
2: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity. Alongside ISRO, India's private space sector is also surging in a big way.
1: Lauding the role of ISRO in space journey, Prime Minister Modi said, ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. India is all set to host the 18th BRICS summit beginning this Saturday at Bharat Mandapam in New Delhi. The two-day summit will bring together 11 major

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाववाद के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे It saves life on earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। कल से शुरू हो रहे 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात UAE सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी।

गी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड जनपद, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद मिलने वाली 60 दिन तक की राहत अवधि समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है। मौजूदा नियम के तहत नौकरी जाने के बाद कर्मचारी को नया नियोक्ता तलाशने या इमिग्रेशन का दूसरा विकल्प अपनाने के लिए 60 दिन तक अमेरिका में रहने की अनुमति होती है। गृह सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलने पर यह सुविधा खत्म हो सकती है। महाराष्ट्र में नांदेड़ भोकर मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सीताखंडी घाट के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक टाटा मैजिक यात्री वाहन को टक्कर मार दी। टाटा मैजिक नांदेड़ से भोकर जा रही थी। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। दुबई में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 149 रन बनाए। सैफ अली वर्मा ने 40 गेंदों पर 64 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। ये मुकाबला आज रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को फाइनल में भारत से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இதுவரை நினைவில் இன்று இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இனிய திரைப்பட பாடல்கள் கேட்டு ரசித்தீர்கள். தொடர்வது ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்தி அறிக்கை, டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே மொஹம்மத் ஜுபேர். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
1: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। शनिवार से शुरू हो रहे 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात UAE सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल होंगे। ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में ब्राजील के विदेश मंत्री का स्वागत किया। मंत्रालय ने कहा है कि भारत और ब्राजील के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और दोनों देश ग्लोबल साउथ के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेंगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ अशोका रोड, बारखंबा रोड, नीति मार्ग, पंशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो

स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और रूस के बीच आर्थिक और औद्योगिक साझेदारी को तेज करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों का लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर और निवेश को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलीखानोव के साथ इनोप्रोम इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही। नौसेना का पोत आईएनएस मैसूर मलेशिया के लुमुट पहुंच गया है। पोत भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के बीच चौथे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में शामिल होगा। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र दोनों स्तरों पर पेशेवर गतिविधियां होंगी। इनमें एक दूसरे के पोतों का दौरा, संचालन संबंधी गतिविधियां और खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाववाद के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। शनिवार से शुरू हो रहे 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात UAE सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड जनपद, अशोका रोड, बारखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया है। IMF के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ी है, जो उम्मीद से बेहतर है। IMF के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजैक ने कहा है कि भारत के बेहतर आर्थिक प्रदर्शन में सेवा क्षेत्र और निर्यात का प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि ऐसे समय में हासिल हुई है जब अर्थव्यवस्था को ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ा। नौसेना का पोत INS मैसूर मलेशिया के लुमहुट पहुंच गया है। पोत भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के बीच 4थे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में शामिल होगा। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र दोनों स्तरों पर पेशेवर गतिविधियां होंगी। इनमें एक दूसरे के पोतों का दौरा, संचालन संबंधी गतिविधियां और खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। कांगो के पूर्वी हिस्से के बुकाबू शहर में 2 स्कूलों में भीषण आग लगने से कम 26 छात्रों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग

0: नई दिल्ली में कल शनिवार से 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू होगा। दो दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है और इसे लेकर राजधानी में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। ब्रिक्स में 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। इनमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात यूएई शामिल हैं। भारत की अध्यक्षता में इस वर्ष ब्रिक्स का विषय है सुदृढ़ता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरो वियेरा करेंगे, जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग भी सम्मेलन में भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सम्मेलन से अलग कई अन्य द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आज से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि इस शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बारखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर निर्भर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। नौसेना का पोत INS मैसूर मलेशिया के लुमुट पहुंच गया है। पोत भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के बीच चौथे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में शामिल होगा। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र दोनों स्तरों पर पेशेवर गतिविधियां होंगी। इनमें एक दूसरे के पोतों का दौरा, संचालन संबंधी गतिविधियां और खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। दुबई में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 149 रन बनाए। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। ये मुकाबला रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। नई दिल्ली में कल इंडियन एथलेटिक्स फाइनल सीरीज में एशियन गेम्स के लिए चुने गए कई भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी पारुल चौधरी ने 9:22.49 के समय के साथ जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi said that India

18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन चलने वाले इस शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय राजधानी में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की भागीदारी है, जिसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। भारत की वर्ष 2026 के ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग।

0: और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन हिस्सा लेंगे। अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी सम्मेलन में भाग लेंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग भी सम्मेलन में भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस इनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर लगातार काम कर रहा है। दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन के लिए ई संजीवनी जैसी तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सत्र में भारत को WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नौसेना का पोत INS मैसूर मलेशिया के लुमुट पहुंच गया है। पोत भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के बीच चौथे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में शामिल होगा। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र दोनों स्तरों पर पेशेवर गतिविधियां होंगी। इनमें एक दूसरे के पोतों का दौरा, संचालन संबंधी गतिविधियां और खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरल, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज वर्षा हो सकती है। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज और चमक के साथ वर्षा की संभावना है। दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट में भारत फाइनल में पहुंच गया है। पहले सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The 18 BRICS summit will get underway at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow, with the national capital putting its finishing touches in place of the grand event. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa and the UAE. The theme of India's ShareShift 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and Prime Minister